सुनो शारदा 90.8 FM। सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में

स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवद गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवद गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूँ गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवद गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं नाजीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। चलिए एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और जाहिर सी बात है कि उसके रिगार्डिंग आप जानना समझना चाहते हैं कि जब भी आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले सामना होता है या कॉलिंग होती है एचआर की आपके लिए कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आपकी क्या डिमांड है, यानी कि रुपये पैसों की क्या डिमांड है। इसी से रिगार्डिंग आज मेरे साथ एक शख्सियत जुड़ रही है जो हमारे साथ शारदा विश्वविद्यालय के डायरेक्टर एंड एचआर शारदा ग्रुप के हेड है एचआर डिपार्टमेंट में, मिस्टर गौरव डिमरी जी। इनके बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बताना चाहूंगा कि सर ने आर्मी में देश की सेवा की है और लगभग 20 वर्षों का अनुभव है और उसके बाद इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ, ये सारी बातें करेंगे। तो गौरव सर, आपका सुनो श्रोता 90.8 एफएम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू गगन जी, रियली एन ऑनर टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म।
0: सर ये हमारा सम्मान है कि आपने समय निकालकर आप हमारे बीच आए, तो निश्चित तौर पर हमारे जो श्रोता हैं, जो लिसनर्स हैं, उनको जरूर फायदा मिलेगा कि एचआर का जो फील्ड है किस तरीके का फील्ड है, यहाँ फ्यूचर क्या है, और पहले तो आप इसके बारे में बताइए।
1: जहां तक एचआर की बात है, दिस इज एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेस। सो टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, मशीनरी कहीं की कहीं अपग्रेड हो जाए, इवन इफ मैन हैज टू रीच द अदर प्लैनेट्स इन द गैलेक्सी, स्टिल दैट मैन हैज टू बी मैनेज्ड। सो फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सीड एनी फील्ड, मोर इम्पॉर्टेंट इज कि जो लोग वहां उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, उनका वेलबींग, उनकी करियर ग्रोथ, उनका डे टू डे रूटीन, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो एक बहुत ही एक ऐसी फील्ड है ह्यूमन रिसोर्सेज जहां अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड एंड एबिलिटी एंड टू कंट्रीब्यूट मैटर्स एंड यू आर एबल टू रियली इन्फ्लुएंस द माइंड्स एंड लाइव्स ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोथ ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स एंड इवन बियॉन्ड ऑफिस आवर्स। सो दैट अपॉर्चुनिटी एन ऑल एनकम्पासिंग रोल ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड प्रोवाइड करती है।
0: जी जी गौरव सर, आप मुझे थोड़ा ये डिटेल में ये भी बताइए कि जब आप किसी को रिक्रूट कर रहे होते हैं तो किन किन खास बातों को आप ध्यान में रखते हैं ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं उस चीज को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने आप को तैयार कर पाएंगे किसी इंटरव्यू के जाते वक्त।
1: देयर इज अ ट्रिक क्वेश्चन आई सपोज। सी द पॉइंट इज दैट सम टाइम्स लोगों को लगता है कि उनका कैंडिडेचर जस्ट बिकॉज ऑफ अ डिग्री बहुत स्ट्रांग हो गया है। I would only say that today the requirements of a job are just not related to the academic degree. Academic degree is an outcome. आपने एक एग्जाम में किस प्रकार से उस दिन परफॉर्म किया, प्रॉबली उसी एग्जाम में आप दो दिन पहले या पांच दिन बाद वही पेपर देते तो शायद वो रिजल्ट नहीं आता,
0: अप्स एंड डाउन्स हो सकते थे मार्क्स।
1: सो दैट करेक्ट, सो दैट आउटकम इज वन फैक्टर
0: जी,
1: लेकिन वॉट मैटर्स इज मोर देन द डिग्री इज योर ह्यूमन क्वालिटीज, योर बिहेवियर, योर कंडक्ट, योर नॉट ओनली द नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट बट द नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ दैट सब्जेक्ट। कि मैं उस पोस्ट पर बैठकर उस डिग्री की मदद से क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूं इस ऑर्गेनाइजेशन में। सो अ कैंडिडेट मस्ट अलाइन हिज अकेडमिक क्वालिफिकेशन विद हिज मेंटल मेकअप and his plan to contribute.
0: चलिए यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। कोई आपके दिल के आसपास कोई एक ऐसा खास गाना है जो आप सुनना चाहते हैं, श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं, वही गाना हम प्ले करेंगे अपने लिसनर्स के लिए।
1: क्योंकि इट्स यूनिवर्सिटी का चैनल है एंड अ लॉट ऑफ यंग पीपल मस्ट बी लिसनिंग टू इट, तो आई थिंक लक्ष्य मूवी का एक सॉन्ग था, लक्ष्य
0: बहुत ही खूबसूरत गाना है और ये गाना आपके प्रोफाइल को या यू कहें कि आपके प्रोफेशन को रिलेट करता है कि अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो लिसनर्स, यहाँ पर जो बातों का सिलसिला लगातार जारी है, आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो श्रोता 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो श्रद्धा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। मैं जिंदगी में ऐसी शख्सियत आपको जब मिल जाए तो निश्चित तौर पर आपको जानना समझना बहुत जरूरी है कि आप किस क्षेत्र से आते हैं, किस तरीके से आपकी कार्य प्रणाली है, आपका जो वर्क नेचर है वो कैसा रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर गौरव डिमरी जी के बारे में, जो कि डायरेक्टर एंड एचआर शारदा ग्रुप हैं, और बहुत सारी बातें इन्होंने ब्रेक पर जाने से पहले हमारे श्रोताओं को बताई। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: एक कैंडिडेट को हायर करते वक्त नो डाउट आपने जो बात बताई कि डिग्री मान्यता रखती है, लेकिन इतना भी नहीं है, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है कि आपके पास अनुभव क्या है। एक फिल्म का डायलॉग भी है कि अगर आप मुझे पहला काम नहीं देंगे और अनुभव की बात करेंगे तो फिर वो मेरा अनुभव कहाँ से कैसे शुरू होगा। तो मैं अनुभव की ही बात करता हूँ कि अनुभव को आप कितना वरीयता देते हैं, या उस वक्त जो आपने कहा कि अगर वो इंटरव्यू अच्छी तरीके से फेस कर पा रहा है, आपके सवाल का जवाब दे पा रहा है, और डिग्री में अप्स एंड डाउन हैं, तो मतलब क्या क्राइटेरिया रहता है, किस तरीके से आप उस व्यक्ति का सिलेक्शन करते हैं?
1: जी देखिए, एवरी जॉब कम्स विद अ जॉब रिक्वायरमेंट, और उसकी जॉब की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इतनी एज होनी चाहिए, इतना मिनिमम एक्सपीरियंस, इस ये डिग्री, दैट हैज टू मैच।
0: जी,
1: लेकिन वो कोई भी कैंडिडेट जो उसको मैच करता है वो उसको इंटरव्यू रूम के डोर तक ले आता है। इंटरव्यू रूम के अंदर उसकी जो क्वालिटीज हैं,
0: जी,
1: चाहे वो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, टेक्निकल नॉलेज हो, और एबिलिटी टू एंगेज हो, वो बहुत मैटर करता है।
0: क्या बात
1: है? क्योंकि अल्टीमेटली डिग्री हैज गिवन द थ्योरेटिकल एंड टेक्निकल नॉलेज, बट एक टीम में काम करने के लिए, टारगेट्स को अचीव करने के लिए, कम्पिटिटिवनेस लाने के लिए, टीम को साथ लेकर चलने के लिए, एक ऑलराउंड पॉजिटिव एनवायरमेंट में काम करने के लिए, एक कैंडिडेट की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स तो मार्कशीट और डिग्री ने दिखा दी।
0: जी जी।
1: सो इन एन इंटरव्यू अ पर्सन शुड नॉट फोकस ओनली ऑन व्हाट ही हैज थ्योरेटिकली लर्न्ड, दैट हैज ब्रॉट हिम टू द इंटरव्यू,
0: राइट,
1: व्हाट विल डिफरेंशिएट फ्रॉम हिम टू अदर।

0: कम टू नो द डेप्थ ऑफ योर क्वालिटी एंड नॉलेज.
1: चलिए यहाँ पर फिर एक ब्रेक आ रहा है जो कि म्यूजिकल ब्रेक है, और गाना जो आप अक्सर सुनते हैं कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया मेरे दिल के आसपास, ये खूबसूरत गाना है जो मैं अपने लिसनर्स को सुनाना चाहता हूँ.
0: जी, सो वन सॉन्ग विच रियली आई लिसन एट टाइम्स व्हेन आई टेक अ ब्रेक इज द सॉन्ग कबीरा फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, बिकॉज़ दैट आल्सो सॉन्ग हैज गॉट अ लॉट ऑफ डेप्थ इन इट्स मीनिंग.
1: रियली नाइस, आप जो गाने का सिलेक्शन कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सिलेक्शन कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी से रिलेट कर ही रहा है. सो लिसनर्स यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सो आप कहीं जाएगा मत. एचआर का जो क्षेत्र है, एचआर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जब आप किसी एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यही सारी बातें हो रही हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से. सो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो श्रादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ.

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर गौरव डिमरी जी, जो कि डायरेक्टर एंड एचआर शारदा ग्रुप से हैं। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: आपके सुपुत्र भी आए हुए हैं जो कि आपकी वीडियो बना रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूँ कि मेरी भी वीडियो बना लीजिए। बहुत हंसमुख चेहरा है। आप हंसते रहिए जनाब, मुस्कुराते रहिए। सो इंसान की मुस्कुराहट कनेक्ट करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एचआर का हम देखते हैं कि मुस्कान है तो जाहिर सी बात है कि बंदा खुश मिजाजी के साथ, मतलब वो डर नहीं रहेगा, डर से मतलब वो बेफिक्र नहीं हो जाएगा, लेकिन एक माहौल खुशनुमा हम बना देते हैं। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि वो मुस्कुराहट गायब है, चाहे वो एक जो इंटरव्यू देने आ रहा है और जो इंटरव्यू ले रहा है। एक बात ये, दूसरी बात इसी से रिलेटेड, चूंकि एचआर की बात हो रही है, जॉब्स की बात हो रही है, भाषा कितना मैटर करती है सर। कभी कभी होता क्या है कि किसी व्यक्ति के पास योग्यता है लेकिन अंग्रेजी का जो धारा प्रवाह है वो उसके पास नहीं है। आपकी बात को वो समझ पा रहा है और अपनी बात वो आप तक पहुंचा पा रहा है। वर्तमान समय में हम जब देखते हैं कि मोदी जी लोकल डायलेक्ट की बात करते हैं, आप जिस भी क्षेत्र में आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, उस भाषा में आप अपनी पढ़ाई को अब आगे लेकर जा सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे प्लीज?
1: आपने जो सवाल, आई मीन दिस इज अ वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, एंड इवन टुडे लॉट ऑफ पीपल हु आर टैलेंटेड, हु पोजेस क्वालिटीज, मे बी शायद वो थोड़ा अपने आप को दो कदम पीछे रखते हैं कि शायद उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में महारत नहीं है
0: जी।
1: लेकिन प्योरली फ्रॉम एचआर पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन से कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोई भी एग्जामिनेशन देख लीजिए, या यूपीएससी हो, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज हो या गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, यू कैन अपीयर इन द लैंग्वेज। व्हाट मैटर्स इज आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, और आपके अंदर अगर काबिलियत है तो उसके लिए उस काबिलियत के भरोसे आप किस प्रकार से लोगों को एंगेज करते हैं,

0: लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा जरूरी है बजाय कौन सी
1: भाषा
0: का इस्तेमाल होता है। और ये दिस इज अ चाहे इट इज इन ऑन अ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, चाहे इट इज एट लीडरशिप स्पेक्ट्रम इन इंडस्ट्री और इन अ यूनिफॉर्म सर्विस और इन अ सिविल सर्विस, द पर्सन इन्फ्लुएंसेस एंड क्रिएट्स एन एनवायरमेंट ऑफ पॉजिटिविटी बाय द चॉइस ऑफ वर्ड्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। तो किसी भी कैंडिडेट को कभी भी इस चीज पे नहीं सोचना चाहिए कि मेरी फलाना भाषा पे महारत नहीं है और फलाना भाषा से मैं वीक हूं। इट डजंट मैटर, आपकी काबिलियत मैटर करती है।
1: क्या बात है। सो लिसनर्स, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद फिर हम अपनी मुलाकात को जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए एचआर के हेड है मिस्टर गौरव डिमरी जी, जो कि डायरेक्टर है एचआर शारदा ग्रुप में। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर गौरव डिमरी जी, जो कि डायरेक्टर एंड एचआर शारदा ग्रुप से हैं। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। सर कभी कभी ऐसा भी होता है, इससे रिलेटेड ही सवाल आ रहे हैं, चूंकि मुझे लगता है कि शायद हमारे पास समय कम पड़ जाएगा। इंटरव्यू के लिए लेटर्स या यू कहेंगे एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आती हैं, और फिर सामने वाले को लगता है कि मेरा इंटरव्यू का कॉल होगा नहीं। लेकिन जब हम देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम, एक वक्त के बाद किसी बंदे को कॉल जाता है, तो उसे बड़ी खुशी होती है कि इस ग्रुप से मुझे कॉल आया। इट मींस कि जो मेरा सीवी था वो एक रिजर्व में रखा गया था, उसको संजो कर रखा गया था। या कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, हम इनको भूल जाते हैं, बैंक नहीं रखते हैं, तो उसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए कि क्या होता है।
1: अगेन आई वुड से वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स को लगता है कि ही इज बेस्ड ऑन द वैकेंसी फॉर अ जॉब, वेदर ऑन पोर्टल और अदरवाइज वो फुली क्वालिफाइड है उस प्रोफाइल के लिए, लेकिन फिर भी शायद उसको वो कॉल नहीं आता। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। कई बार पोजीशंस निकलती हैं और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स की वजह से ऑन होल्ड हो जाती हैं। कई बार पूल ऑफ कैंडिडेट्स को और वाइड करना पड़ता है, कई बार सिलेक्शन को नैरो डाउन करने के लिए QRs चेंज करनी पड़ती हैं। सो ऐसा, लेकिन किसी भी कैंडिडेट को अगर वो क्वालिफिकेशन को मैच करता है तो आज नहीं तो कल ही विल, इफ ही इज क्वालिफाइड,
0: तो कॉल जाता ही
1: जाता है। Also, it is nothing to worry about.
0: So, listeners, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद फिर हम अपनी मुलाकात को जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए HR के हेड हैं मिस्टर गौरव डिमरी जी, जो कि डायरेक्टर है HR शारदा ग्रुप में। तो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरी यानी गगन के साथ। और आज स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर एंड एचआर शारदा ग्रुप से गौरव डिमरी जी, जो कि बहुत अच्छा अनुभव अपना मिलिट्री क्षेत्र में इन्होंने देश की सेवा की है। एक अनुशासन को लेकर शारदा विश्वविद्यालय में आते हैं और शायद जब किसी को रिक्रूट करते हैं तो दिमाग में यही रहता है कि बंदा अनुशासित होना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि अनुशासन अगर आपके जीवन में होगा तो निश्चित तौर पर आप कहीं पर भी मात नहीं खाएंगे। फाइनली आपकी तरफ से एक मैसेज अगर मैं कहूं कि एक श्रोता को, एक लिसनर्स को, या जो कोई इंटरव्यू देने आ रहा है उसके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा कि किन किन खास बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए इंटरव्यू देते वक्त?
1: As I said earlier also, educational qualification और technical knowledge आपको इंटरव्यू के दरवाजे पे ले आएगा।
0: जी,
1: इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कैंडिडेट सक्सेसफुल होने के लिए अपना इमोशनल क्वेश्चन पे भी ध्यान दे कि वो किस प्रकार से कम्युनिकेट करता है, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते आप एंगेज नहीं कर सकते। जब तक आप एंगेज नहीं कर पाएंगे आप लीड नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशंस को लीडर्स चाहिए, वो लोग चाहिए जो प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट कर सके, चैलेंजेस को एंटिसिपेट कर सके एंड अ सेट ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके, नॉट कि चैलेंजेस का होने का वेट करें और बोलें कि मेरी डिग्री मुझे क्वालिफाई करती है, मैं इन चैलेंजेस को अब सॉल्व करूंगा। इट शुड बी द एंटिसिपेशन ऑफ अ चैलेंज, इट शुड बी द एबिलिटी टू एंगेज विद पीपल, इमोशनल क्वेश्चन एंड पॉजिटिविटी, ऑनेस्टी ऑफ पर्पस, हाईएस्ट लेवल्स ऑफ इंटेग्रिटी विच विल विच विल
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: अदर देन द डिग्री ओनली।
0: So, listen, मैं समझता हूँ इन बातों को अगर आप गांठ बांध लेंगे तो आप कहीं पर भी मात नहीं खाएंगे, यानी कि वो जॉब आप हासिल कर ही पाएंगे। चलिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। और बस यही कहूंगा कि सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अरे मनोज काय मुँह लटकाए बैठा हो, का बात होगी?
1: अब कहो बताऊं भैया, दो दो बेर कोविड को टीका लगवायो, हमसे कही यासु जो प्रमाण पत्र मिलेगो ना आगे बड़ा काम आएगो।
0: तो का हुआ, मिला ना? तो
1: मिलो तो है, पर याय देख देख के अपना माथा ठोक रो हूँ।
0: क्यों, तेरे नाम में कोई गलती है? पिताजी का नाम कुछ और गेर दिया
1: ना? वे दोनों तो ठीक है, फोटो भी ठीक है।
0: तो का बात है
1: भैया, जब मोबाइल दुनिया हाथ में ले घूमो ना, वाकु नंबर ही गलत गेर दियो।
0: ए तो यहाँ इतने परेशान होने का बात है, छोटी सी गलती है, हो जावे कभी कदार इस गलती।
1: तो अभी वो ठीक ना होवे?
0: बिल्कुल होगी। यूं मान लो अगर या के जैसी दूसरी गलती है, जैसे तुमने दूसरा टीका लगवा लिया हो पर प्रमाण पत्र में ना लिखा गया हो, विदेश यात्रा को प्रमाण पत्र पे पासपोर्ट का विवरण ना लिखा गया हो, या कोविन पोर्टल पे लॉगिन करने को कई दूसरे नंबर का उपयोग करा गया हो, ये सारी गलती भी ठीक हो जावे। लेकिन एक बात याद रहे, यू बस एक ही बार ठीक हो गया।
1: अरे एक बार तो ठीक हो जाए, पर याकू करनी क्या होगी?
0: कुछ ज्यादा ना, बहुत आसान है। कंप्यूटर इंटरनेट की जाए थोड़ी सी भी जानकारी है ना, वो आदमी अपने आप या घर बैठे ही ठीक कर देगा। सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर पे जाके cowin.gov.in टाइप करो, वहाँ के बाद कोविन के होम पेज पे ऊपर दाईं ओर कोने में दिए हुए रजिस्टर साइन अप पे क्लिक करो, फिर जहाँ मोबाइल नंबर को उपयोग तुमने टीकाकरण के टाइम पे करो वहाँ नंबर डालो और 6 अंकन को एक ओटीपी आवे, वहाँ वेरीफाई करके तुम्हारी प्रोफाइल खुल जाएगी, वहाँ पे तुम्हारे टीकाकरण की स्थिति दिखाई दे जावे। प्रमाण पत्र में सुधार करने को ऊपर दाईं ओर दिए हुए रेज द इशू पे क्लिक कर दो और वह प्रक्रिया पूरा कर लो, बस होगा तुम्हारा काम चुटकी बजा से। या के अलावा अगर तुम्हें कोविड के टीकाकरण प्रमाण पत्र में कोई भी त्रुटि है तो वाकु मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी से भी संपर्क साध सको।
1: रही ना बात, इब करूं प्रमाण पत्र में सुधार।
0: यू जानकारी यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

सुई राम राम दोस्तों आप सत श्री अकाल आदाब मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुन शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ गुड मॉर्निंग।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाभी लो मिठाई खाओ।
1: अरे किस खुशी में?
0: सीता क्लास में फिर से फर्स्ट आई है।
1: वाह, तेरी बेटी तो बिल्कुल तूफान मेल है। मेरी रिंकी तो हमेशा थकी थकी, नंबर भी कम आते हैं, थकान मेल कहने लग गए सब उसे।
0: ओहो भाभी, रिंकी को अनीमिया तो नहीं?
1: अनीमिया?
2: अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
1: ललिता लो मिठाई खाओ।
0: अरे वाह, रिंकी भी थकान से तूफान बन गई।
3: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
5: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। 9:17 हो चुके हैं, 15 तारीख है। हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। फिलहाल ग्रेटर नोएडा और दिल्ली NCR में आज 15 जुलाई 2026 को अधिकतम बोले तो मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और वही मैं एयर की बात करूं यानी कि हवा की अगर हम बात करें तो हवा में नमी का स्तर लगभग 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 35% से लेके 48% तक रहेगा। उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। और दिन में जो तापमान है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आसमान की स्थिति यानी कि आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे लेकिन भारी बारिश की संभावना कम है और कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और हवा की जो गति है वो करीब 9 से लेकर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। सूर्योदय का अगर मैं जिक्र करूं तो 5:32 पर सूर्य भगवान नजर आए और सूर्यास्त होगा 7:19 पर। और मौसम की अपडेट कुछ निकल कर आ रही है मॉनसून की, उसके बारे में जानेंगे जरूर कि कहां बारिश होगी, कहां कम होगी और कहां हवा में बादल बनते हैं और वो हवा में ही हवा हो जाते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। 9:18 15 तारीख, गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। यह है ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेने पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से उसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है। और यकीन मानिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सेहत सही तो लाभ कई। इस बारिश के मौसम में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें ये जानना समझना बहुत जरूरी है। बारिश के मौसम में अक्सर होता क्या है कि ऑन रोड हमें सीवर नजर नहीं आ रहा होता। ऑन रोड सीवर के ढक्कन कभी कभी खुले होते हैं और बारिश के मौसम में जल भराव की जब स्थिति होती है तो वहीं जहां ढक्कन खुले हुए हैं घटना दुर्घटना घट जाती है। नाले ओवरफ्लो होते हैं जिसकी वजह से पानी नालों से निकलकर या नाली से निकलकर सड़क पर आ जाता है जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे समय में हमारा फर्ज बनता है कि सुरक्षित चले, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और साथ ही ऐसे मौसम में अक्सर हमने ये देखा है कि पोल्स यानी कि जो बिजली के खंभे होते हैं उसमें भी करंट दौड़ जाता है जिसकी वजह से जाने अनजाने में जनधन हानि हो जाती है और कभी कभी तो बहुत बड़ी घटना घट जाती है। और बारिश के मौसम में हमने ये भी देखा है कि पेड़ गिर जाते हैं। बारिश के मौसम में हमने ये भी देखा है कि रोड धस जाती है। जब कोई स्पीड में गाड़ी चलाकर आ रहा है तो आगे उसे नजर नहीं आता कि रोड धसी है या नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि जो आपकी तय सीमा लिमिट है उससे थोड़ा कम चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। बारिश के मौसम में कैसा अपना ख्याल रखें क्योंकि सच कहते हैं सेहत सही तो लाभ कई, इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

धीरे चलो। आज मैं बात कर रहा हूँ कि बारिश के मौसम में किस तरीके से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि सच बात तो ये कि सेहत सही तो लाभ गई, और सच कहते हैं जो कहते हैं कि जान है तो जहान है। बारिश के मौसम में सुरक्षित चलिए, स्पीड का ध्यान रखिए, यानी कि थोड़ी कम रखिए स्पीड, क्योंकि आगे गड्ढा है क्या है कुछ नजर नहीं आता। बारिश के समय में बिजली के खंभों में करंट उतर जाता है, तो उससे भी अपने आप को बचाकर रखना है। बारिश के मौसम में पेड़ गिर जाते हैं तो घटना दुर्घटना घट सकती है। जब आप ऑन रोड हैं तो सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। इसके अलावा बारिश के मौसम में सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए क्या करें क्या ना करें उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात आती है खान पान का। जब खान पान का मैं जिक्र करता हूं तो बात निकल कर ये सामने आती है, एक्सपर्ट कहते हैं डॉक्टर्स कहते हैं कि उबला हुआ पानी पीजिए, यानी कि पानी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए हमेशा पानी उबाल कर या फिल्टर कर आप पिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें आप ले सकते हैं, काढ़ा हर्बल टी अदरक वाली चाय या गर्मा गर्म सूप आप पी सकते हैं। बाहर के खाने से यानी कि अपने आप को बचा कर रखिएगा। स्ट्रीट फूड चाट और पहले से कटे हुए फल बिल्कुल आप ना खाएं, इनमें इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है। पत्तेदार सब्जियों से आप परहेज करें, इस मौसम में हरे पत्तेदार सब्जियों में कीड़े और बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। तो ये कुछ खास बातें, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और भी कुछ बातें हैं उसके बारे में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
5: सुनो शारदा।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। बारिश के मौसम में किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्या करें क्या ना करें, ये जानना बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि बारिश के मौसम में ऑन रोड जब आप चल रहे होते हैं, जल भराव की वजह से कहीं कोई गड्ढा है हमें नजर नहीं आता, इसलिए सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। अपनी गाड़ी की जो स्पीड तय है उसे थोड़ा कम रखिए। इसके अलावा घर से थोड़ा 5 से 10 मिनट पहले आप निकलें ताकि ऑफिस आप समय पर पहुंच पाएं। बिजली के खंभों में करंट आ जाता है, उससे अपने आप को बचा कर रखिए। और ऑन रोड अक्सर पेड़ गिर जाते हैं, तो वहां पर कोई घटना दुर्घटना ना घटे, वहां से अपने आप को बचा कर निकालिएगा। और कुछ खास बातें जैसे कि घर की देखभाल के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि खान पान का ध्यान रखिएगा, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें आप खा सकते हैं और बाहर के खाने से परहेज करेगा। अब बात कर लेते हैं घर की देखभाल की, यानी कि होम केयर। मच्छरों को पनपने न दें, क्योंकि जब बीमारी नहीं होगी और सेहत सही होगी तो लाभ कई होंगे। घर के आसपास कूलर या गमलों में पानी जमा न होने दें ताकि डेंगू मलेरिया से बचाव हो सके। सीलन और फंगस से अपने आप को बचा कर रखें। अलमारी और कपड़ों को सूखा रखने के लिए कपूर या सिलिका जेल के पाउच का इस्तेमाल आप करें। वेंटिलेशन जरूरी है, जब बारिश थमे तो थोड़ी देर खिड़कियां खोलें ताकि घर के अंदर की नमी और उमस कम हो सके। सफर आपका सुरक्षित रहे इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, यानी कि अगर आपका बदन गीला है, कपड़े गीले हैं तो तुरंत बदल लें। अगर आप बारिश में भीग कर आ रहे हैं तो तुरंत नहाकर सूखे कपड़े पहने ताकि सर्दी खांसी ना हो। रेन गियर साथ रखें, यानी घर से बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट हमेशा अपने साथ रखें। गाड़ी धीरे चलाएं, यानी सड़कों पर फिसलन और जल भराव यानी कि वाटर लॉगिंग के कारण दुर्घटना का खतरा रहता है, इसलिए स्पीड कम रखें। और वर्क फ्रॉम होम लोगों को मिल जाता है, मिलना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में आप घर पर रहकर अपनी फैमिली के बीच में वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, पसंदीदा फिल्में देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और मनोरंजन के लिए बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। एफएम यही कहता है कि सेहत सही तो लाभ कई। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए वन एंड ओनली रेडियो एफएम सुनो शारदा 90.8 एफएम, जो कि अपने ग्रेटर नोएडा का एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। मैं हूं गगन, आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। Beautiful track, music director Bheems Cecirolio, singers Pawan Singh and Jonita Gandhi, lyrics Vayu Srivastava.

0: पूछी लूंगी पो।
1: पवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
2: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खाते भी तक कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे के नहीं।
1: हाँ
2: चलो धूम मचाते हैं।
1: फिक्स।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हंसते हंसते कट जाएंगे रस्ते। राम राम, दो सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूँ अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से अगर दुआओं में कुछ मांगना चाहते हैं तो यही मांगेगा जो अक्सर हमने सुना है, पढ़ा है कि प्रथम सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया। इसी प्रकार से कई सारे सुख बताए गए हैं, लेकिन जब बात हो आपके स्माइल की तो जाहिर सी बात है कि इस मुस्कान के पीछे राज क्या है, इस राज को हम सब जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से इस मुस्कान को मेंटेन करके रखा जाए। जाहिर सी बात है कि इस संबंध में बात करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, तो एक कम्युनिटी कनेक्ट के तहत हम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, एक राब्ता हम यहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस संबंध में मेरे साथ दो खूबसूरत मेहमान जुड़ रहे हैं, बहुत बड़े अनुभव के साथ आप आते हैं। आप हैं स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेस से डिपार्टमेंट ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर पल्लवी शर्मा। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: मैंने करेक्ट प्रोनाउंस किया या नहीं, क्योंकि मेरे सामने बहुत दिनों के बाद ये वर्ड आया। चलिए आप यूं ही मुस्कुराते रहे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरे जो शख्सियत है, बहुत बड़े अनुभव के साथ आप आते हैं और आप भी इसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। आप हैं प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर सुखदीप सिंह जी, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, ये आपका डिपार्टमेंट है। तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, शुक्रिया।
0: आप लोग कैसे हैं पहले मुझे ये बताइए।
2: मजे में,
0: वेरी गुड। और मैम आप कैसी हैं?
1: खुश।
0: वेरी गुड, मजे में रहिए, खुश रहिए। और ईश्वर से ही मेरी परवरदिगार से कामना है कि हम सब खुश रहें। कहा जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यही हमारी सोच है। तो मैम सबसे पहले हम ये जानना समझना चाहते हैं, जिस विषय के साथ आज रेडियो पर आप आई हैं, हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे अपने दांतों का हम ख्याल रखें, कैसे अपनी मुस्कान को हम बरकरार रखें। तो जो सबसे पहले जहन में यही सवाल आता है कि मुस्कान क्यों हमारे लिए, हम सब के लिए जरूरी है?
1: मुस्कान जरूरी है क्योंकि वो हमारी खूबसूरती बढ़ाती है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरी बात, मुस्कान हमारी पर्सनालिटी में बढ़ावा देती है, हमें लोगों से कनेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है स्माइल करना
0: जी,
1: है ना। आप मुस्कुराइए तब आपके साथ लोग जुड़ते जाते हैं
0: जी।
1: सो मुस्कान हमारे सिर्फ आत्मविश्वास के लिए ही नहीं जरूरी है, मुस्कान हमारे रिलेशनशिप्स के लिए जरूरी है, हमारी पर्सनालिटी के लिए जरूरी है। और मुस्कान एक तरीका है ये जताने का कि हम कितने आभारी हैं, खुश हैं जो फॉर द लाइफ दैट वी हैव।
0: यस यस। तो सर मैम ने जो कहा इसमें कुछ आप ऐड ऑन करना चाहेंगे?
2: मुस्कान स्माइल जो है कि लैंग्वेज है, ये कम्युनिकेशन जो इंसान करता है, इंसान जो हम हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं, सामाजिक जानवर कहते हैं इसको। तो हमारी जो भाषाएं हैं बहुत सारी हैं, जैसे मुंह से बोलते हैं हम, लेकिन उसके लिए हमें एफर्ट करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, खपत करनी पड़ती है। लेकिन स्माइल एक ऐसी लैंग्वेज है, आप किसी पे स्माइल करिए, आपको अपने आप फ्री में तुरंत जवाब आएगा स्माइल से, स्माइल का जवाब। तो ये हमारे को भगवान ने, एक नेचर ने बहुत बड़ा एक तोहफा स्ट्रेंथ दी है कि आप किसी पे स्माइल करें वो स्माइल करेगा। तो लेकिन स्माइल के पीछे बहुत मेहनत लगती है, डेंटिस्ट को बनाने के लिए स्माइल। अच्छा। एक, लेकिन भगवान ने हमको फ्री में दिया है, आपको सिर्फ बस अपने लिप्स को हिलाना है और दांत दिखाने हैं, लेकिन ये भी कई बार लोग नहीं कर पाते।
0: आपने जो बात एक छेड़ दी, यहाँ पर भी एक सवाल हमारे सामने रख ही दिया है लिसनर्स के सामने, कि जो डेंटिस्ट होता है उसको बड़ी मेहनत लगती है कि अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है किसी पेशेंट के साथ, वो जो मेहनत लगती है उसके बारे में आप प्लीज बताइए कि किस मेहनत की बात आप कर रहे हैं।
2: सो इस मेहनत को हम एकदम जीरो कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक डेंटिस्ट और एक मरीज पेशेंट। अब अगर कोई भी, अब मरीज, हर एक इंसान मरीज नहीं है, इंसान मरीज बनता है। कैसे बनता है? वो खुद बनाता है अपने आप को। अगर हर एक इंसान बचपन से, जब से पैदा हुआ है, बच्चे की उम्र से, एक साल की उम्र से, जब से उसका पहला दांत निकलता है, अगर वो एक डेंटिस्ट के पास जाए, अपना रूटीन चेकअप कराता रहे, तो वो कभी मरीज नहीं बनेगा जिंदगी में, और डेंटिस्ट को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अफसोस कि आम तौर पे देखा गया है एक्सपीरियंस में कि लोग सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें दर्द होता है या कोई दिखने में परेशानी आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है अफसोस। सो अगर रहते वक्त में लोग आ जाएं, चेक कराते रहें, तो ये हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत से मेरा मतलब ये था कि यस, जब तकलीफ हो जाती है फिर इस रिपेयर करना पड़ता है, तो उसमें फिर इलाज करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कहाँ तकलीफ है, क्या दिक्कत है, वगैरह वगैरह
0: जी। डॉक्टर पल्लवी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इसी बात को हम आगे लेकर जाएंगे, कुछ एक रिसर्च के जरिए हमने क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं कि व्हाट इज द लिंक बिटवीन ओरल हाइजीन एंड अपीयरेंस ऑफ स्माइल, हाउ डज इट इम्पैक्ट कम्युनिकेशन। मैं अपने श्रोताओं को इसका रूपांतरण बताना चाहूंगा। दोस्तों, मौखिक स्वच्छता और मुस्कान के बीच क्या संबंध है और ये संचार को कैसे प्रभावित करती है, तो इसी संबंध में डॉक्टर से जानते हैं इसका आंसर जी।
1: थैंक यू। मेरी नजर से ओरल हाइजीन और मुस्कान में वही संबंध है जो जय और वीरू में है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: देखिए, अगर आपके दांत गंदे हैं
0: जी,
1: पीले हैं, मसूड़ों में सूजन है, मुंह में बदबू है, तो आप चाहकर भी नहीं मुस्कुरा पाएंगे। आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा बात करने का, मुस्कुराने का। और जैसे अभी सर ने बताया कि मुस्कुराहट जरूरी है आत्मविश्वास के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। जहाँ ओरल हाइजीन खराब है वहाँ मुस्कुराहट में कॉम्प्रोमाइज है, और जहाँ मुस्कुराहट नहीं है वहाँ आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और जहाँ कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ कम्युनिकेशन तो
0: नहीं
1: इफेक्टिव हो ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बात में अगर आपको लगता है कि डॉक्टर पल्लवी की बात को हम और आगे लेकर जा सकते हैं, मेरा सोचना मानना ये है, कुछ और अगर आप कहना चाहें।
2: देखिए, इंसान की जो सेहत है, ऐसा माना जाता है, हमारी किताबों में लिखा है कि जो मुंह है इंसान का, जो ओरल कैविटी है, माउथ है, ये गेटवे टू द बॉडी है, ये द्वार है हमारे पूरे शरीर के अंदर की सीक्रेट्स का, अंदर की कितनी आपकी हेल्थ ठीक है जानने का। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो पहले मुंह में दिखाई देती हैं, फिर बॉडी में आपको पता लगता है किसी को कि अंदर बीमारी भी थी। लेकिन अफसोस की बात कि ज़्यादातर लोग अपने मुंह को निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे जो दांत हैं या जो उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ही भगवान ने स्ट्रांग बनाए हैं, स्टडी है, वो रेजिलियंट है, वो बहुत देर तक अब्यूज सह लेते हैं, लेकिन जब वो ब्रेक डाउन होते हैं फिर ऑफकोर्स फिर लोग जाते हैं ठीक कराने। और लेकिन ज्यादातर वो एक लंबी प्रोसेस है, फिर चाहे वो छोटी सी कैविटी हो, चाहे वो जैसे मैडम ने बताया मसूड़ों की दिक्कत हो, कोई सर्जरी करनी हो, उसमें फिर वक्त लगता है, एक्सपर्टीज लगती है, और फिर जो लोगों का सबसे बड़ा डर है आज की तारीख में कि डेंटिस्ट्री बहुत महंगी भी है।
0: तो क्या महंगी है या नहीं?
2: देखिए, महंगी जो है ये लफ्ज बहुत ही रिलेटिव है। जो चीज़ मुझे महंगी लगती है आपको शायद सस्ती लगती हो, और उसमें बहुत सारे इसके बहुत सारे रंग हैं इसके। महंगा सिर्फ पैसे की वजह से नहीं होता है, वैल्यू की वजह से भी होता है। अब कोई चीज़ मेरे लिए, अगर मेरा ये पेन है, अगर ये टूट जाए अभी, इससे मैं दवाई लिखता हूँ, इसकी एक्चुअल MRP तो 10 रुपये है, पर वैल्यू मेरे लिए इसकी हज़ारों में है अगर ना मिले टाइम पर मेरे को। तो इसलिए सेहत जो है, जैसे मैंने कहा, ये फ्री है, मुफ्त है, हर एक के पास भगवान ने बांट रखी है, पर उसका हम ख्याल नहीं करते हैं। तो डेंटिस्ट्री महंगी कभी कभी पैसों की वजह से हो जाती है, क्योंकि हमारे जो हमारे मशीन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं, वो काफ़ी महंगे आते हैं और ज़्यादातर इम्पोर्टेड हैं। ऑफकोर्स आजकल तो खैर इंडिया में सब कुछ बनता है, सब कुछ से मेरा मतलब है जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो जाती है, पर कुछ चीज़ें अभी भी हम बाहर से मंगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो उस वजह से महंगी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक लेकिन कहना चाहूँगा, फीस जो है वो एक्सपीरियंस, स्किल और जगह की वजह से होती है
0: जी,
2: सिर्फ मटेरियल से नहीं होती है।
0: सर, आपने जो जिस तरीके से एक परिभाषा दी है, आपने डॉक्टर पल्लवी ने बहुत खूबसूरत उसको यू कहें कि हमारे लिसनर्स तक पहुंचाया कि किस तरीके से हम अपने दांतों का ख्याल रखें, किस तरीके से मुस्कान का ख्याल रखें, और जब आपकी मुस्कान रहती है तो निश्चित तौर पर एक कॉन्फिडेंस आता है। मैं आपकी बात को यहां कहना चाहूंगा, जो हमारे साथ लिसनर्स जुड़ रहे हैं, कि आप लोगों का हमारा डेंटल स्कूल है, यानी कि बहुत रियायत दर पर यहां ट्रीटमेंट आप लोगों को मिलता है। सो लिसनर्स, आप यहां आ सकते हैं, और खास बात यह है कि सर और मैडम की जो टीम है लोगों के बीच में भी जाती है, और कभी कभी वहां से लोगों को लेकर भी आती है, और बहुत सुविधाजनक यहां से ट्रीटमेंट आप लोगों को मिलता है। तो चलिए, इस बात का जो सिलसिला है लगातार जारी है, तो आप मेरे साथ बस यूं ही जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है कि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में 4 चांद लग जाएंगे। तो कोई आप दोनों की पसंद का एक गाना, या कोई पहले आप बताना चाहें, पहले आप चल रहा है तो ये तो सर आपको मौका दे रहा है, कहते ना लेडीज फर्स्ट मैम, तो प्लीज आपके दिमाग में कुछ जहन में आ रहा होगा ना।
2: बहुत पुराना गाना है, आई थिंक मुकेश का था, मुकेश जी का, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार।
0: क्या बात है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो यही खूबसूरत गाना सिर्फ आपके लिए कहीं जाएगा। बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम, मेरे यानी गगन के साथ, और दो खूबसूरत मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बातें हो रही हैं आपकी ओरल हाइजीन के विषय में। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर वक्दा, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम राबता।

0: सवाल है डॉक्टर सुखदीप सिंह जी से।
1: जी, जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। पहले हम एक्सपेंसिव की बात कर रहे थे। मुंह का और दांतों का ख्याल रखना बहुत ही आसान है और उसकी कीमत ना के बराबर है। हमें सिर्फ दिन में दो बार ब्रश करना है एक नॉर्मल किसी भी टूथपेस्ट के साथ। हमें अगर सीख जाएं, और सीखना चाहिए एक्चुअली, हमें फ्लॉस करना चाहिए। दांतों के बीच की जो जगह होती है उसे हमें कभी साफ़ नहीं करते हैं। हमें दो बार ब्रश करना है, फ्लॉस करना है, मुंह साफ रखना है। जितनी बार खाते हैं उतनी बार अगर हम ब्रश कर लें तो बहुत ही बढ़िया, हमें कभी कोई तकलीफ होगी नहीं। इतना आसान है दांतों का ख्याल रखना।
0: जी,
1: तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों की हैबिट्स के बारे में बात कर रहे थे हम। सो बच्चों में बहुत तरह की हैबिट्स हैं। जिनके बच्चे हैं वो जानते हैं, जिनके नहीं हैं वो देखते रहते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कोई अपनी उंगली में, अपने मुंह में उंगली डालता है, कोई अपने उंगली चूसता है, कोई अपने नाखून खाता है, कोई बाल खाता है, कोई अपने लिप्स बाइट करता है, कोई जीभ को बाहर निकालता है, वगैरह वगैरह। सो बच्चे बड़े यूनिक होते हैं, बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते रहते हैं। लेकिन इन इंटरेस्टिंग बातों का कई बार बैड इफेक्ट्स होते हैं, दे हैव बैड कॉन्सिक्वेंसेज। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा अंगूठा चूसता है 2.5-3 साल की उम्र के आगे जा करके, तो उसके जो ऊपर के दांत है, जो ऊपर का उसका जबाड़ा है, जो जॉ है, जो मैक्सिला कहते हैं हम, वो बाहर को आ जाता है, दांत बाहर आ जाते हैं और उसका फिर हमें इलाज करना पड़ता है। सो अगर किसी भी बच्चे को आप देखते हैं, आपके इर्द गिर्द आपके हों या पड़ोसियों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, आपके बच्चे में कोई हैबिट है, तो प्लीज़ आप ज़रूर गो टू योर नियरेस्ट पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या कम टू स्कूल ऑफ डेंटल साइंस। हमारे यहाँ पर हम ऑलमोस्ट मुफ्त इलाज करते हैं और सब इस तरह की बीमारियों से निजात मिलेगी आपको।
0: बहुत खूबसूरत। और इसीलिए कहा जाता है शारदा विश्वविद्यालय की जो टैग लाइन है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर।
2: हाँ, मेरा बहादुर, यानी कि मैं इसको हिंदी में रूपांतरण करता हूँ कि तुम कहो मैं यहाँ हूँ। सर, ये मेरे साथ आ जाता है बहादुर।
0: तो ये बहादुर होता है और सुबह मेरा लाइव प्रोग्राम जाता है जिसमें कि ये मेरे साथ संवाद करता है और अच्छी अच्छी बातें करता है, ये मुझे करेक्ट करता है, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। तो मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सर का जो सवाल का जवाब मेरा सवाल था और जवाब सर का था, और उसमें मैं थोड़ी सी छोटी सी बात ये समझना चाहूंगा कि सर ने कहा कि 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, एक अच्छी आदत है, बच्चों में इस आदत को हमें डालना चाहिए। मैं यहाँ टाइम की बात करना चाहूंगा कि कितना टाइम ब्रश में लगाना चाहिए, एक एटलीस्ट स्टैंडर्ड टाइम जो रहता है।
3: जी बिल्कुल, एक ठीक से ब्रश करने की प्रक्रिया करीब 2 मिनट लेती है।
0: दो मिनट
3: लेती है। कहते हैं अगर आप हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग चलाएंगे तो वो पूरा सॉन्ग खत्म होना चाहिए, तब तक आपका ब्रश चलता रहना चाहिए। और ठीक से ब्रश करने का एक तरीका भी है। हम दांतों को बर्तनों की तरह नहीं घिसना है, है ना? आपको कोशिश करनी है कि अपने हाथ को गोल गोल घुमाएं, अपने ब्रश को थोड़ा गोल तरीके से घुमाएं, और ऊपर के मैक्सिला को और मैंडिबल को, ऊपर वाले जबड़ों को और नीचे वाले जबड़ों को अलग अलग ब्रश करें। मुंह को बंद करके नहीं रगड़ना है दांतों को। ऊपर वाले दांतों को अलग से ब्रश करना है और नीचे वाले दांतों को अलग से ब्रश करना है।
0: तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ब्रश करना और कितना टाइम देना। जल्दबाजी में लोग बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं जिसका खामियाजा आगे चलकर भुगतना पड़ता है। तो मैम, जब बच्चों का आप जिक्र कर रही हैं, जैसे सर ने बताया कि नाखून है, बच्चे खा लेते हैं, कुछ और दिक्कतें परेशानियां उनके सामने आती हैं, तो इससे रिलेटेड मैं समझना चाहूंगा कि चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीजें बच्चों को बहुत नुकसानदायक साबित होती हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहती हैं, किस तरीके से वो अपने दांतों का ख्याल रखें?
3: जैसे सर ने पहले बताया कि ओरल कैविटी इज ऑल्सो अ मिरर टू द सिस्टमिक हेल्थ, है ना? तो ये चिप्स है या कोल्ड ड्रिंक है या बहुत ज्यादा स्वीट्स खाना, वो सिर्फ दांतों के लिए ही हानिकारक नहीं है, वो हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अगर मैं सिर्फ दांतों की बात करती हूँ तो यही ये सारी चीजें, एक तो स्टिकी होती हैं, ये दांतों में जाके, दांतों के बीच में जाके अटक जाती हैं, फिर ये हमारे दांतों में जो कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनका खाना भी बनती हैं। तो इन द होल प्रोसेस क्या होता है कि दांतों में कैविटीज हो सकती हैं, दांतों में कैविटीज हो जाती हैं जो जिनको फिर भरना पड़ता है, या फिर मसूड़ों में सूजन हो सकती है जिसकी वजह से कि ब्लीडिंग गम्स होना या फिर बदबू होना, उसकी परेशानी होती है।
0: ठीक है।
3: इसके अलावा बार बार बच्चों को बार बार मीठा खाना, उससे ये प्रॉब्लम एग्रीवेट होती है। अगर आप बार बार मीठा खाते हैं या बार बार चिप्स खाते हैं, बार बार कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इससे ये प्रॉब्लम एग्रीवेट होती है।
1: मजेदार बात ये है कि बच्चों को आपने कहा चिप्स और ये कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, और जो कैविटी बनाते हैं कीड़े, उन्हें भी यही पसंद है।
0: अच्छा।
1: तो ये बड़ा मजा आ जाता है। तो जो कीड़े हैं वो पार्टी करते हैं बच्चे के साथ, लेकिन बच्चा तो पार्टी करके सो जाता है, लेकिन कीड़े सोते नहीं है, वो दांत के ऊपर बैठ के ये सब खाते हैं और काइंड ऑफ तेजाब बनाते हैं, उस तेजाब से वो दांत घुल जाते हैं, उसी को हम कैविटी कहते हैं।

0: कहते हैं। बहुत खूबसूरत, मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा था और वाकई मानना पड़ेगा आप डॉक्टर साहब कि आपने मेरे दिमाग को पढ़ लिया। तो मैं इस सिलसिले को आगे लेकर जाता हूँ। सवाल तो बहुत है, बातों बातों में सवालों का जवाब आता रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर पल्लवी आपसे ही समझना चाहूंगा, अंग्रेजी में पहले ये सवाल रख लेता हूँ कि हाउ डू यू अप्रोच यंग पेशेंट्स हु आर सेल्फ कॉन्सिक्वेंस अबाउट देयर टीथ और स्माइल, स्पेशली इन द स्कूल और टीन ईयर्स, करेक्ट? तो दोस्तों, इसका जो अनुवाद अगर हम करें तो आप उन युवा रोगियों से कैसे संपर्क करते हैं जो अपने दांतों या मुस्कान को लेकर खासकर स्कूल या किशोरावस्था में आत्म जागरूक होते हैं, तो मैम क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में?
1: देखिए, सबसे जरूरी है पहले उनकी परेशानी को समझना
0: जी,
1: कि क्या ऐसी परेशानी है उनके दांतों में या जो कि उनके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर रही है। फिर दूसरी चीज मेरे लिए जरूरी है उन्हें ये समझाना कि टीनेज ईयर्स में जब आपके प्राइमरी दांत जो आपके मिल्क टीथ होते हैं वो टूट रहे होते हैं और आपके नए दांत परमानेंट टूथ आ रहे होते हैं, तब दांतों का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होना एक पर्टिकुलर स्टेज होती है जिसे हम अगली डकलिंग स्टेज कहते ही हैं, कि जब आपके आगे वाले दो दांत बड़े दिखते हैं अलग से जो आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करने लगते हैं, ये सब कुछ टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है। थोड़े टाइम बाद दांत अपने आप ही, जब आपके सारे परमानेंट दांत आ जाएंगे तब आपके दांत ठीक दिखने लगेंगे, विच विल एनीवेज गिव यू कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज युवावस्था में ये परेशानी होना कि मैं ब्रेसेस लगाया है, बहुत सारे बच्चों को ब्रेसेस लगाने के बाद मुस्कुराने में तकलीफ होने लगती है, उन्हें लगता है कि लोग उनका शायद मजाक उड़ाएंगे या दे डोंट फील कॉन्फिडेंट इनफ। तो उनको ये भी बताना कि ये सिर्फ एक ट्रीटमेंट, इट्स ट्रीटमेंट का पार्ट है
0: जी,
1: और इवेंचुअली आपके दांत टेढ़े मेढ़े नहीं रहेंगे, ठीक हो जाएंगे,
0: ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। Nice.
2: आजकल वैसे भी सेल्फी का जमाना है, तो हमारे को इन बच्चों तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, खुद ही आ जाते हैं कि मेरे दांत ठीक करिए, मेरी स्माइल ठीक करिए। और पेरेंट्स को आमतौर पर यह परेशानी होती है कि इनसे ब्रश कैसे करवाया जाए। बच्चे हैं, इनफैक्ट उसका बहुत ही सिंपल सा एक समाधान है कि जब बच्चे पैदा होते हैं, कुछ महीने के होते हैं, जब पहला दांत आता है, अगर पेरेंट्स उससे भी पहले जब दांत नहीं भी होता है, हम ये रेकमेंड करते हैं कि हमारा सुझाव है कि आप कोई भी गीला कपड़ा, साफ कपड़ा लेकर, गीला करके कॉटन वगैरह, बच्चे के जो मसूड़े हैं उन्हें साफ करने की हैबिट डालिए। बच्चे का मुंह साफ रहेगा, उसको हैबिट पड़ेगी मुंह साफ रखने की। फिर जब पहला दांत आता है तभी से आप दांत ब्रश करना शुरू करिए। उस तरह के ब्रश अवेलेबल हैं मार्केट में, महंगे नहीं हैं, और या कॉलेज हमारे पास स्कूल में आइए, हम आपको फ्री भी दे सकते हैं। वो ब्रश करिए आप बच्चों का पहले दांत आने के टाइम से, और उनकी हैबिट बनती रहेगी, और जब बड़े होंगे तो वो अपने आप ब्रश करते ही रहेंगे। हम हैबिट बहुत लेट डालते हैं, ये दिक्कत है।
0: तो लिसनर्स, कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही कि अगर दोनों की बातों को हम निष्कर्ष निकालें, कंक्लूजन करें, तो यही समझ में आता है कि इन बातों को आप गांठ बांध लीजिए, इन बातों को सोचिए, समझिए और अप्लाई करिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उनके दांतों को मजबूत करिए ताकि वो अच्छी तरीके से फल खा पाएं और वो चबा पाएं। क्योंकि कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि एक फल अगर आपके दांत 32 हैं, 32 बार चबाएंगे, तो चबाना भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, एक अच्छी प्रक्रिया है जो कि आपके स्वास्थ्य को मजबूत करती है। तो डॉक्टर पल्लवी, अब आपकी बारी है, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे और कौन सा गाना सुनाना चाहेंगी?
1: किसी की मुस्कुराहटों पे होने सा।
0: हाँ, ये तो हो चुका है। हाँ, और दूसरा आप मुझे बताएं।
1: पहला नशा।
0: चलिए, नशा आप करिए, खुशबू का नशा करिए, काम का नशा करिए, मोहब्बत का नशा करिए, और नशे से अपने आप को बचा कर रखिएगा। यानी कि इस विषय पर हम बात करेंगे। मैम ने बहुत अच्छा इशारा कर दिया कि तंबाकू, सिगरेट या और भी प्रकार का नशा आपके दांतों के लिए नुकसानदायक है। वो वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सोर्स आर द 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के तहत हम यहाँ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर सुखदीप सिंह, जो की प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज शारदा विश्वविद्यालय से, और साथ ही साथ मेरे साथ हैं डॉक्टर पल्लवी शर्मा, प्रोफेसर हैं आप डिपार्टमेंट ऑफ पीरियडोंटोलॉजी स्कूल ऑफ साइंसेज शारदा यूनिवर्सिटी से। तो एक बार फिर से सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: बहुत अच्छे अच्छे गाने आप सुन रहे हैं, अपने श्रोताओं को हम सुना रहे हैं। तो सर अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा सुखदीप सर जी, अगर कोई व्यक्ति यू कहें कि थोड़ा मैं इंग्लिश में ले लेता हूँ फिर इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, व्हाट कैन गो रॉन्ग इफ अ पर्सन डज नॉट मेंटेन गुड ओरल हाइजीन, यानी कि लिसनर्स अगर कोई व्यक्ति अच्छी जैसे कहते हैं ना कि अपने दांतों का यू कहें कि मौखिक स्वच्छता नहीं रखता है, तो क्या उसके साथ दिक्कतें हो सकती हैं, क्या परेशानियां हो सकती हैं सर?
1: सबसे आसान जवाब ये है कि हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाने की जरूरत है और खाना खाने के लिए हमें दांतों की ज़रूरत है, और दांत सिर्फ दांत नहीं, स्वस्थ अच्छे दांत, और दांतों को अच्छा रखने के लिए अच्छे मसूड़े चाहिए क्योंकि मसूड़ों के अंदर ही दांत होते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक सी बात है जो हम सब जानते हैं, लेकिन हम इसकी कदर नहीं करते क्योंकि हमें 32, 28 या 20, 30 दांत मिले हुए हैं मुफ्त में और हम उसको अब्यूज़ करते रहते हैं। वो एक खराबी हो गया तो निकाल दिया, फिर भी 20 हैं जो अपना काम करते जा रहे हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब ये दांत हमारा साथ छोड़ देते हैं और फिर हम कुछ खा नहीं पाते ढंग से, और इसके फिर बहुत सारे नतीजे हैं। जैसे कि सबसे पहला ये है सिंपल सा कि आप खाने का मज़ा नहीं ले सकते। अगर आप खाने का मज़ा नहीं ले, जिंदगी में कुछ मज़ा ही नहीं है। हमारी भाषा में कहते हैं दांत गए थे खान गया जहान गया। सो अगर आप खाना नहीं एंजॉय कर रहे हैं तो आपके पास आनंद लेने का एक मौका कम हो गया। दूसरा, अगर आप ठीक से खा नहीं रहे हैं तो आपकी जो सेहत है वो गई। ये बहुत गहरी और उतनी सिंपल बात भी है कि दांत का काम बहुत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको अच्छा खाना पचा करके अंदर बॉडी में डालता है ताकि आपकी बॉडी चलती रहे, आपका स्वास्थ्य बना रहे और आप लंबा जिए और अच्छा जिए। सिर्फ लंबा नहीं, नॉट ओनली क्वांटिटी ऑफ लाइफ बट ऑल्सो क्वालिटी ऑफ लाइफ। दैट इज वेयर द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ टीथ एंड द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कम इन। बाकी डॉक्टर पल्लवी आपको बताएंगे मसूड़ों के बारे में, ये एक्सपर्ट है उसमें।
0: हाँ ठीक है, चलिए बताइए डॉक्टर पल्लवी, गेंद अब आपके पाले।
2: सर ने सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बोल दी है कि जहाँ दांत नहीं है वहाँ न्यूट्रिशन अफेक्ट होता है
0: जी।
2: बाकी मसूड़ों की बात है तो अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हैं तो डिपॉजिट्स होते हैं जिसे हम हमारी भाषा में प्लाक कहते हैं, और इस प्लाक में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो जर्म्स जो कि मसूड़ों को और दांतों को हानि पहुंचाते हैं। तो सूजन से शुरू होता है, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों की सूजन बढ़ते बढ़ते मसूड़ों से खून आना, कभी कभी स्पॉन्टेनियस ही खून आ जाता है, कभी ब्रश करते वक्त या हार्ड, बहुत आमतौर पर लोग कहते हैं कि एप्पल खाते वक्त खून आता है
0: जी।
2: फिर बदबू, मुंह से बदबू आना। अब अगर आपने ये परेशानी को वहीं नहीं रोका, अगर आपने हम डेंटिस्ट के पास नहीं आते हैं, स्केलिंग नहीं करवाते हैं, अपनी ओरल हाइजीन ओरल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, तो ये ही कीटाणु आपके चले जाते हैं हड्डी तक, दांतों की हड्डी तक
0: जी।
2: फिर उसको नुकसान पहुंचाते हैं जो कि इवेंचुअली दांतों को ढीला करता है, लीड्स टू मोबिलिटी, और अगेन दांत झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं।
0: आम भाषा में कहें तो हम पोपले हो जाते हैं। अब आप सोच लीजिए जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, अपने दांतों को मजबूत रखना चाहते हैं, अपनी मुस्कान को बरकरार रखना चाहते हैं, तो भैया ये गुरु मंत्र आपको दे दिया है, इन बातों को जान लीजिए समझ लीजिए। डॉक्टर पल्लवी, नशे का आपने जिक्र किया, नशा एक गाना हमने सुना बहुत ही खूबसूरत गाना था, लेकिन मैं यहाँ जिस संबंध में बात करना चाहता हूँ, तंबाकू है, सिगरेट है, कोयला का अपने आप में नशा है कि लोग कोयले से मंजन करते हैं, तो ये कितना नुकसानदायक है हमारे दांतों के लिए?
2: गाने के लिए तो ठीक था
0: जी जी जी जी,
2: पर नशा तो नुकसानदायक है ही
0: जी।
2: अब चाहे वो सिगरेट हो या तंबाकू हो या बीड़ी खैनी, किसी भी तरह का नशा हो, वो दांतों तक ही नहीं, वो बाकी आपके मसूड़ों के लिए, आपके शरीर के लिए ही बहुत नुकसानदायक है। और हम सभी जानते हैं कि नशा करने से कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं,
0: ये बात निकल कर आई सामने।
2: और इंडिया में इस बेल्ट में हमें अनफॉर्चुनेटली ओरल कैंसर के केसेस स्पेशली बिकॉज ऑफ टोबैको च्यूइंग काफी दिखाई देते हैं
0: जी।
2: और बड़ा तकलीफ है इलाज भी बहुत मुश्किल है। मैं वहाँ कहना चाहूंगी कि ये इलाज बहुत महंगा है हर तरह से।
0: जी, एक विज्ञापन मेरे जहन में आ रहा है, जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, तंबाकू आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है, वो पिक्चर भी दिखाई जाती है कि एक जबड़ा दिखाया जा रहा है, उसको कैंसर था, वो उस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लोग अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक तो ये होता है कि हम अवेयर नहीं है, हमें पता नहीं है, लेकिन जब हम अवेयर हैं, जब हमें पता है, तो आप सोचिए छोटी छोटी हमारी तनख्वाहें होती हैं, अगर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने में लगा ही देंगे तो फिर हमारे पास सेविंग्स क्या होंगी। हाँ, अगर जाने अनजाने में आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो निश्चित तौर पर आप डॉक्टर से सलाह मशवरा करिए, लेकिन कहा कि अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मत मारिएगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खुशनुमा बनाइए, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करिए, सेविंग्स करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें साझा करते रहिए। वक्त है यहाँ पर एक और छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। अब की मेरी पसंद का गाना सुना देता हूँ। मुस्कुराने की वजह तुम हो, यानी कि आप दोनों मेरी मुस्कुराने की वजह है, तो ये गाना आप दोनों के नजर सिर्फ सुरुश ऑफ द 90.8 FM पर।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। समुदाय का जब जिक्र होता है तो यहाँ ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, एक कम्युनिटी को साथ लेकर चलने की बातें होती हैं और उस कम्युनिटी से हम कनेक्ट करते हैं यानी कि कम्युनिटी को जोड़ने का काम करते हैं और इसीलिए ये प्रोग्राम बना है राबता, यानी कि हम आपसे राबता कर रहे हैं। और इसी संबंध में दो डॉक्टर हमारे साथ आज जुड़े हैं जो कि बहुत अपने फील्ड के महारथी हैं और हर एक सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी तरीके से बातें हो रही हैं। आप हैं हमारे साथ डॉक्टर सुखदीप सिंह जी जो कि प्रोफेसर एंड हेड हैं डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट शारदा हॉस्पिटल शारदा यूनिवर्सिटी से। आप हैं डॉक्टर पल्लवी शर्मा जो कि आप प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर पल्लवी, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: कुछ भ्रम होते हैं जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में मिथ, और दूसरी हम बात करें कि कुछ लोग जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो कैसे आप अपने शब्दों में लोगों को अवेयर करेंगे? जैसे कि मुझे समझ में आता है कि एक नशे का मंजन आता है, हमारी महिलाएं हमने देखा है कि वो रग रगड़ के उसका आनंद ले रही होती हैं। दूसरा हमने ये भी देखा है घरों में राख कोयला, तो कितना गलत है। मुझे समझ में आता है कि गलत है, कितना गलत है। और इसी में अगर आपको लगता है कि कुछ मिथ हैं, यही ये भी एक मिथ है, तो इस संबंध में आप रोशनी डालिए, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, इतने सालों से प्रैक्टिस करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को जो मिथ लगता है कि डेंटिस्ट के पास तभी जाना है जब दर्द है। कितने लोग बोलते रहते हैं हम तब तक नहीं आए क्योंकि दर्द नहीं था। मैम
0: जी,
1: जैसे सर ने बताया कि अगर आप दर्द का वेट करेंगे तो तब तक आपका दांत या तो इतना कमजोर हो गया होगा कि बचाना मुश्किल होगा, या फिर उसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा, मे बी डिफिकल्ट और महंगा हो चुका होगा। तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना है हर 6 महीने में,
0: हर छह महीने में।
1: और दांतों में दर्द का इंतजार नहीं करना है। सिर्फ थोड़ा ही दांतों में खाना फंसता हो या मसूड़ों में सूजन लगती हो या कभी ब्लीडिंग हो रही हो या बदबू आ रही हो, ये सभी परेशानियां बड़ी परेशानियां का इंडिकेशन है। तो हमें इंतजार नहीं करना है कि हमें हमारी परेशानी बड़ी हो जाए।
0: जी।
1: एक दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट वो है, लोग कहते हैं ब्रश तो करते हैं।
0: हाँ।
1: अब सिर्फ ब्रश करना ही जरूरी नहीं है। ब्रश दिन में 2 बार करना, रात को ब्रश करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सुबह का ब्रश है। मेरी समझ से इनफैक्ट रात वाला ब्रश थोड़ा ज्यादा जरूरी है, जिससे कि जो जर्म्स हमारे पार्टी कर रहे हैं ना, उनकी पार्टी को बंद करना है। हमें रात को ब्रश करके लाइट्स आउट करना है कि पार्टी ओवर।
0: जी जी,
1: 4 बज गए पर पार्टी अभी बाकी है नहीं।
0: नाइस,
1: ठीक है। ऊपर से जैसे हमने बताया कि ब्रश करने का एक सही तरीका
0: है, सलीका
1: जरूरी है, सलीका भी है। फिर एक ब्रेसेस के लिए, लोग अधिकतर मानते हैं कि ब्रेसेस सिर्फ बच्चों के लिए है, ऐसा नहीं है। आजकल एक इन्विजिलाइन करके ट्रीटमेंट आता है जो कि अडल्ट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है और ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है एंड डूएबल है, विच हेल्प यू नो क्रुकेड दांत है, टेढ़े मेढ़े दांतों हैं, उसका ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। सो ब्रेसेस सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बने हैं। उसके बाद एक सर ने जैसे बोला कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है। डेंटल ट्रीटमेंट हम एक्सपेंसिव बनाते हैं क्योंकि हम तब तक इंतजार करते हैं कि दर्द ना हो हमें। दूसरी बात, आप हमारे यहाँ आइए शारदा स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज में, जहाँ पे अधिकतर ट्रीटमेंट हम फ्री भी करते हैं और बहुत ही
0: कंसेशन के साथ रियायत करते हैं।
1: वेरी गुड।
0: इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे जो कोयले को मंजन के साथ मतलब इस्तेमाल करते हैं, कोयले की राख को और इस तरह से नशे का जो है, तो क्या कहना चाहिए?
2: आजकल बहुत ही उम्दा टूथपेस्ट मिलते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, एडवांस्ड है और महंगे भी नहीं है।
0: जी।
2: इसकी कुछ वजह है, इसकी वजह ये है कि जो ये आप बता रहे हैं कोयले की कोयला या राख से करना, वो डेफिनेटली हानिकारक है और काफी हानिकारक है दांतों के लिए, और आगे जाके जो आपके दांतों को इरिवर्सिबल नुकसान करते हैं, आपको 6 दांत खोने पड़ेंगे अपने। मिथ्स में मैं ये कहना चाहूंगा कि कई लोग आगे कहते हैं हमारे को पेरेंट्स के बच्चों के दांत जो दूध के हैं उनका क्या साफ करना है, वो तो गिरी जाने हैं। ऐसा कतई नहीं है। देखिए, बच्चे के जो दूध के दांत हैं वो करीबन 12-13 साल की उम्र तक रहते हैं, और 12-13 साल तक की उम्र का बच्चा अगर ठीक से नहीं खा पाएगा, 6 साल पे दांत खराब हो गए, 7 साल पे दर्द हो रहा है या पस भरी हुई है, तो खाना नहीं खा पाएगा तो ग्रो कैसे करेगा? उस उम्र में बच्चे को ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एक मिथ है जो बहुत सारे लोगों को है कि दूध के दांत साफ करने का क्या फायदा, गए तो गए, कोई बात नहीं, निकल ही जाने, नए आ जाएंगे, पर नए कब आएंगे? रहेंगे 12-13 साल की उम्र में। दूसरा बहुत सुनने में आता है कई बार कि ऊपर का दांत निकाल देंगे तो आंखों पे असर पड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आधे से ज्यादा दुनिया के लोगों के ऊपर के दांत निकाले हुए हैं,
0: दाढ़ का भी जिक्र होता है,
2: जाड़ का खासतौर पे, कि ऊपर की जाड़ निकालेंगे तो आंख पे असर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद ही सोचिए, देखिए अपने इर्द गिर्द कितने लोगों के दांत उभर कर निकाले हुए हैं, क्या वो सब अंधे हो गए हैं?
0: जी
2: तो ये ऐसे बहुत सारे और भी मिथ हैं, लेकिन आजकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है। लेकिन राख और कोयले से कतई बिल्कुल भी ब्रश मत करिए, दांत साफ मत करिए।
0: सर इसी से संबंध में मेरे एक दिमाग में एक बात आ रही है जो अक्सर मैंने देखा है सुना है कि नमक और सरसों का तेल मिला के लोग करते हैं, वो कितना गलत है या सही?
2: बहुत लोग करते हैं, हमने भी सुना है। देखिए हमारी किताब में साइंस में इसके बारे में कुछ कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर क्योंकि आजकल बहुत सारा नेचुरोपैथी का ज़माना है, अगर कोई उस पे जो एक्सपर्ट है वो ये कहता है कि इसके पीछे कुछ रिसर्च की है और उससे कुछ फ़ायदे हुए हैं, वो अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, पर हमारी किताब में हमारी साइंस में ऐसा कुछ इसके बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है।
0: तो दोस्तों कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये कि इस बात को अगर हम समप करें, निष्कर्ष निकालें कि अपने दांतों का ख्याल रखिए, बहुत गहनता से अच्छी तरीके से सर ने मैडम ने ये बातें हमें बताई और ब्रश जरूर करेगा। साधारण तरीके से यही समझ में आता है कि अच्छा खाइए, अपने आप को तंदुरुस्त बनाकर रखिए, दांत मजबूत रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी माशाल्लाह सातवें आसमान पर रहेगा, और निश्चित तौर पर कहीं कुछ आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे तो वो इंटरव्यू आप फाइट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ योर स्माइल, बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस की वजह। तो डॉक्टर साहब आप दोनों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और मैं एक दावत भी देता हूँ कि अगर आप जब भी समय मिले कोई दूसरी श्रृंखला करना चाहें तो ढूंढिएगा गगन का, गगन के साथ ही मुझे दूसरी श्रृंखला करनी
2: है। जरूर जरूर जी, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने के लिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और खुश रहे, आबाद रहे।
0: क्या बात है, कुछ अगर और कुछ कहना चाहें?
1: थैंक यू सो मच, मुस्कुराइए क्योंकि आप राब्ता से जुड़े हैं।
0: अरे वाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, मुस्कुराइए क्योंकि आप राब्ता से जुड़े हुए हैं और हम आपसे राब्ता कर रहे हैं। फिलहाल किसी के दिल में जगह बनानी हो तो मैं अपनी भाषा में कहूंगा कि मुस्कुराते रहिए। वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9:11, अपना ख्याल रखिएगा, और ये भी कहना चाहता हूँ कि ना टेंशन लेना ना किसी को टेंशन देना, जिंदगी को सरल खुशनुमा आसान बनाइए, और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। कैसा लगा आपको प्रोग्राम? 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा सुनो शारदा 90.8 FM का फेसबुक पेज है, वहां पर भी आप अपना कॉमेंट दे सकते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूँ सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.
5: ओले ओले ओले। ओ शोनक। हेलो कौन?
6: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
7: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
6: जल्द मिलते हैं।
5: हेलो हेलो हेलो।
8: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
9: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
10: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं हुआ करती। कहते ये भी हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। राम राम, दोस्त सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और प्रोग्राम का नाम है हौसले की डगर। जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास हौसला है तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। एक मंजिल को पाने के लिए निश्चित तौर पर एक मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है। जब मेहनत होती है तो दिक्कतें परेशानियां भी आती हैं। उन परेशानियों से कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें और कैसे अपने सपने को हम साकार कर सकते हैं। आज एक खास दिन है, एक खास उत्सव है। उत्सव मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ये बात निकलकर सामने आती है और एक व्यक्ति तक वो बात पहुंचती है तो वो बात एक उत्सव के रूप में निकल कर आती है और उस बात के पीछे सब लोग लग जाते हैं कि कैसे अपने अंदर एक हुनर को हम लेकर आएं और जिसकी वजह से हम आगे जा सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को जॉब दे सकते हैं। स्किल्स की बात हमने सुनी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके बारे में बहुत सारी बातें की हैं। आज का दिन 15 जुलाई एक खास दिन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। आज का दिन यानी कि यूथ स्किल्स डे ऑन जुलाई 15th। इसी विषय पर बात करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है और जब हम उनसे बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें हम साधारण तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौशल क्या है, ये कौशल विधा क्या है, इसके जरिए कैसे हम अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। तो इसी संबंध में आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, मैं स्वागत इस्तकबाल करना चाहूंगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आप, हैं शारदा स्किल्स एंड करियर सर्विसेज के आप डायरेक्टर हैं मिस्टर धीरज शर्मा जी। सर, सुरो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल।
2: थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। तो आप सबको, जितने लोग भी ये सुन रहे हैं, हमारे देश के नवयुवक, उनको वर्ल्ड यूथ स्किल डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी स्किल्स को लेके और यूथ को लेके बहुत ज्यादा कार्यरत हैं और उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। तो अगर मैं देखूं कि इसकी आपके जीवन में क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री हमेशा ये बोलते हैं कि रादर देन बिकमिंग अ जॉब सीकर यू शुड बिकम अ जॉब क्रिएटर। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाइए। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आप बहुत सारी नौकरियां दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या स्किल्स की जरूरत है उसके बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि आप जो भी एक पर्टिकुलर डोमेन, टॉपिक, सब्जेक्ट पकड़ते हैं उसको केवल सतह लेवल पे मत करिए, उसमें डूब के, इमर्स करके उसमें ऐसी प्रोफिशिएंसी लेके आइए ताकि आपको उसके बारे में अंदर से लेके बाहर तक सब आता हो, ताकि आप उसमें कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी अपना सर्विस क्रिएट करें तो आपका वो डिफरेंशिएटर हो, वो विश्व स्तर पे जाए, केवल वो हमारे देश तक रिस्ट्रिक्टेड ना रहे, वो विश्व स्तर तक जाए और आपका नाम आगे बढ़े।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सर ने इशारा कर दिया कि अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, कुछ चीजों में इजाफा करना चाहते हैं, अपने स्किल्स में निखार लेकर आना चाहते हैं और जब आप अपने आप को अप टू डेट रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप इंडिया से बाहर निकलिए और जब बाहर जाकर कुछ और अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे तो निश्चित तौर पर अपने देश का भी नाम रोशन होगा। हम बात कर रहे हैं स्किल्स के बारे में और आज एक दिवस है, एक डे है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, यूथ स्किल्स डे। यानी कि 15 जुलाई को ये हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार की जो थीम है स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, यानी कि साझा भविष्य के लिए कौशल, इसी के बारे में बातें होंगी जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का जब हम जिक्र करते हैं तो ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। जब मुझे लगा कि यूथ स्किल्स डे जो कि 15 जुलाई को आ रहा है, इसी संबंध में हमने एक ताना बाना बुना, इसी संबंध में हमने एक गेस्ट स्पीकर से मुलाकात की कि सर प्लीज आप आएगा और हमारे जो श्रोता हैं, जो लिसनर्स हैं, उनको बताएगा स्किल्स के बारे में। और इसी संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं आप हैं मिस्टर धीरज शर्मा जी, जो कि डायरेक्टर हैं शारदा स्किल्स एंड करियर सर्विस के शारदा विश्वविद्यालय में। तो सर एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल।
1: थैंक यू सो मच। थैंक यू
0: सर। बेसिक तरीके से मैं समझना चाहता हूँ, एक साधारण व्यक्ति उस बात को कैसे जाने समझे, ये कौशल विधा क्या है, ये हम सबके लिए क्यों महत्वपूर्ण।

0: पूर्ण है, क्यों हमारे लिए ये कुछ समय से बहुत जरूरी हो गए। अदरवाइज हम पहले देखें, नो डाउट तब भी स्किल्स की बात होती थी, एक हुनर की बात होती थी कि अगर आपके पास ये हुनर है तो निश्चित तौर पर बच्चे कोई आपको रोक नहीं सकता, कहीं आप मात नहीं खाएंगे। क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, आप किसी भी हुनर में बहुत आगे तभी बढ़ेंगे अगर वो हुनर आपका पैशन है। अगर उसमें आपका पैशन नहीं है तो आप कभी भी उसमें डूब के आगे नहीं जाओगे, और डूबोगे उसी में, मतलब उसी में इमर्स करोगे जिसमें आप

0: तक अपना पैशन से काम नहीं कर रहे हो. तो मेरी आप सब नव जो भी यूथ है उससे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि एक्सप्लोर करिए. एआई के जमाने में आज की डेट में घर बैठ के आपको जो समझना है, जो सीखना है, जिसके बारे में पता करना है वो पता कर सकते हैं. अगर जिसके बारे में आपने पता करके ये पता कर लिया कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट और इसमें अगर मैं काम करूंगा तो मैं बहुत आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये काम नहीं है, मेरे लिए ये पूजा है.
1: बहुत खूबसूरत, बहुत सही बात आपने कही कि पैशन होना बहुत जरूरी है, डूब कर जाना होगा. और आपको ये पता करना बहुत जरूरी है कि जो चीजें आपको अभी तक लापता थी, और जिस दिन आप पता कर लेंगे, मालूमात हासिल कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता. सर ने एक बात का जिक्र किया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हम कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बातें होंगी कि ये कौशल विकास को कैसे आगे लेकर जा सकता है या इसकी मदद से हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसी के बारे में बातें जानेंगे जरूर. सो आप कहीं जाएगा मत, बहुत अच्छा विषय है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और बातें हो रही हैं. आज हमारे साथ यूथ स्किल्स डे पर बात करने के लिए धीरज शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो कि डायरेक्टर ऑफ शारदा स्किल्स एंड करियर सर्विस शारदा विश्वविद्यालय से आप आते हैं. तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ.

0: एक गाना है, बड़ा ही खूबसूरत गाना है कि सोचना क्या जो होगा देखा जाएगा, घायल फिल्म का गाना है। और एक गाना है जो जीता वही सिकंदर का कि हारी बाजी को जीतना जिसे आता है वही सिकंदर कहलाता है। सच बात तो ये कि दोस्त, अगर आपके पास कोई एक हुनर है, हुनरमंद आप हैं, अगर आपको लगता है कि ये मेरा हुनर है, इसमें कैसे निखार ला सकता हूँ, कैसे इसको मैं बेहतर बना सकता हूँ, डूब कर मुझे जाना होगा जिस तरीके से सर ने बात की ब्रेक पर जाने से पहले कि जो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में मालूमात आप हासिल करते हैं, AI का समय है, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं चीज़ों के साथ, दुनिया जहान बहुत कुछ कर रही है, हमें अपने आप को आगे लेकर जाना है, इंडिया का नाम रोशन करना है। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं तो निश्चित तौर पर दूर दराज एक गांव में बैठे हुए व्यक्ति तक वो बात पहुंचती है और पूरी बाढ़ सी आ जाती है कौशल विकास के क्षेत्र में। और हर कोई स्टार्टअप करना चाहता है अपने आप को सीखते समझते। कौशल विकास की बात हो रही है और इसी संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप हैं धीरज शर्मा जी, जो कि शारदा स्किल्स एंड करियर सर्विस के आप डायरेक्टर हैं, शारदा विश्वविद्यालय में आप यहाँ वर्किंग है। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम।
1: थैंक यू।
0: ब्रेक पर जाने से पहले बात आपने जो की, बहुत अच्छी बात की, सच्ची बात कही कि डूबना पड़ेगा। डूबने से मतलब ये है कि वो चीजें आपको हासिल करनी पड़ेंगी जो आप करना चाहते हैं, उसके बारे में डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, चाहे अगर आप उस फील्ड में कुछ कर रहे हैं। अगर आप, मैं अपनी बात बताऊं, मीडिया के फील्ड में मुझे कुछ करना है तो मुझे अच्छे अच्छे इंटरव्यू सुनने होंगे, वर्कशॉप अटेंड करनी होंगी। और आज का जो समय है वो AI का है, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि किस तरीके से AI आज के समय में हमारी मदद कर सकता है, कैसे हम अपने आप को, अपने हुनर को आगे लेकर जा सकते हैं। और फिर उसके बाद बात आती है रोजगार की, तो प्लीज आप बताएं कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं।
1: देखिए, AI इज नथिंग बट एन असिस्टेंट। ज्यादातर लोग AI को देख के आज की डेट में इसने घबरा रहे हैं, उनको लग रहा है ये मेरी नौकरी चले जाएगी इसको
0: जी,
1: के।
0: जी।
1: लेकिन मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ, अगर आप एक समझदार युवक हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको AI को एज ए टूल यूज करना है अपना काम आसान करने के लिए। दिमाग आपका है, स्किल आपकी है, और ज्यादा स्किलफुल बनने के लिए AI को यूज करके आप अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी सीखिए। जो मैंने पहली बात क्या बोली आपसे कि सबसे पहले आपको देश दुनिया में क्या हो रहा है वो एक्सप्लोर करना है। उसके बाद जो भी हो रहा है उसमें से कौन सी ऐसा एक टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है जो मेरे को बहुत क्लोज है, जिससे मैं बहुत क्लोजली अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा हूँ, वो आइडेंटिफाई करता हूँ। उसके बाद में उसमें जितना भी उसके अराउंड लिटरेचर है, वीडियोज हैं, AI मॉडल्स हैं, वो सब सीखता हूँ। सो इसके लिए आपको बहुत शिद्दत के साथ सीखना पड़ेगा, बिना उसके कुछ नहीं होगा। बहुत सारे सेटबैक्स आएंगे, बहुत सारे फेलियर्स आएंगे, लेकिन अगर वो काम जो आप कर रहे हो, जो आप स्किल सीख रहे हो, जिस जो आप चाहते हो कि मैं करना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं इसको लगातार करता रहूँ और बिना हार माने आगे बढ़ता चला जाऊं, तो एक ना एक दिन मैं उसको हासिल कर लूंगा। और ये किसकी मदद से कर पाऊंगा, जब AI के बहुत सारे टूल्स मेरे को मदद कर रहे हैं उसको सीखने के लिए। आप एक बार जब मैंने वो सीख लिया, मैं आपके जो आप कर रहे हैं
0: RJ
1: जो आप कर रहे हैं, अगर मैं आप ही के फील्ड की बात करता हूँ या मैं अपने फील्ड की बात करता हूँ, मेरे को जो भी सीखना है आज की डेट में, मेरे को कोई एक ट्यूटर की जरूरत नहीं है, मेरे को फिजिकल ट्यूटर की जरूरत नहीं है। मैं अगर मैं सीखने की शिद्दत रखता हूँ तो मैं जितना डीप डिग करूंगा, जितने ज्यादा AI टूल्स यूज करूंगा, उतना ज्यादा मैं सीख लूंगा। एक बार मैं सीख गया, अब मेरे को पता लग गया मेरा शॉर्टकमिंग क्या है, उसको फुलफिल कर लिया, अब मैं अपना एक USP, अपना एक डिफरेंशिएटर क्रिएट कर लूंगा जो दुनिया को चाहिए
0: जी,
1: शायद जिसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। अब उसके लिए जहां मेरे को एज अ असिस्टेंट कोई चाहिए, तो मैं AI का टूल यूज कर लूंगा।
0: राइट।
1: तो उससे मेरा ये मदद हो जाएगी, मेरा आधा काम वो कर लेगा और मैं सीखता चला जाऊंगा और आगे बढ़ता चला जाऊंगा जिंदगी में।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दोस्तों, बातों बातों में एक बात निकल कर ये सामने आई कि AI की वजह से आपकी जॉब्स नहीं जाने वाली हैं। अपने आप को थोड़ा यूं कहें कि नॉलेज में इजाफा करिए, चीजों को जानिए, समझिए AI किस तरीके से काम कर रहा है। और सर ने ये भी बात कही कि आपको फिजिकल यानी कि साक्षात किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है, AI के जरिए बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं, AI के माध्यम से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। और सच बात तो ये कि वर्तमान समय में जो एक अफवाह है, जो रूमर है कि AI आपकी जॉब्स लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। आप डरे नहीं, घबराए नहीं। हम बात करेंगे फेलियर्स के बारे में, हम बात करेंगे चैलेंजेस के बारे में, वो बातें होंगी जरूर धीरज शर्मा जी से, जो कि स्किल्स डिपार्टमेंट के आप डायरेक्टर हैं शारदा विश्वविद्यालय में। और आज हम यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं सुरशादा 90.8 FM पर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: बड़ा ही खूबसूरत एक शेर है, कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानेब मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं गगन आपके साथ। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। 15 जुलाई आज है और यूथ स्किल्स डे, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी संबंध में, इसी बाबत हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं, आप हैं डायरेक्टर धीरज शर्मा जी, जो कि स्किल्स एंड करियर सर्विस डिपार्टमेंट से आप आते हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू सर।
0: ब्रेक पर जाने से पहले आपने एआई के बारे में बातें की कि ये जॉब्स नहीं लेगा, जो कहीं ना कहीं लोगों के दिल दिमाग में बैठी हुई बातें हैं कि अफवाहें हैं। मैं भी वही कहता हूं कि अफवाहें, कि एआई आपकी जॉब नहीं लेगा। एआई आपका असिस्टेंट है, एआई आपका दोस्त है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। जब कोई चलता है तो जाहिर सी बात है कि दिक्कतें परेशानियां भी आती हैं, कुछ फेलियर्स भी आते हैं, जैसे आपने खुद कहा। वो चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं मैं समझना चाहूंगा, मेरे लिसनर्स भी समझना चाहेंगे, ताकि उन चैलेंजेस से ओवरकम होते हुए एक इंसान आगे बढ़ सकता है।
1: देखिए सर, आप जो भी स्किल, जो भी टेक्निक, जो भी डोमेन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। कोई भी चीज
0: एक रात में
1: नहीं होती। आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो अपने अंदर इमर्स करनी है, वो है पेशेंस। तो अगर आप में पेशेंस है और यू आर नॉट अ विक्टिम ऑफ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होने वाली है। आपकी जिंदगी में आप कुछ भी करने जाओगे, उसमें आपको बहुत सारे फेलियर्स और सेटबैक मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आप उस फेलियर और सेटबैक से बाहर तभी निकल सकते हो अगर आपने ये देख लिया, आप वो फेयर ऑफ फेलियर से बाहर निकल पाओगे तभी, अगर जो काम आप कर रहे हो वो दैट इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट। मेरा मैंने शुरू में भी यही बोला था, मैं आज भी यही बोलूंगा, अगर उसमें पैशन नहीं है, अगर उसमें शिद्दत नहीं है, तो आप उसको सरफेस लेवल पे करके छोड़ जाओगे, आप अंदर डूबोगे नहीं उसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेयर ऑफ फेलियर से बाहर निकलने के लिए आपको अपने आप को इतना प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाला बनाना है, आपको इतना आगे का सोचना है कि ये सब जर्नी का पार्ट है और यहाँ मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरे को अपना फ्यूचर बनाने के लिए करना पड़ेगा। और जहाँ आपने ये देख लिया कि दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ, फेलियर्स सेटबैक्स आर पार्ट एंड पार्सल और दिस इज मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर एवरी पासिंग डे, और मैं उन फेलियर्स को फेलियर की तरह ना देखते हुए ये देख रहा हूँ कि इससे मैंने क्या सीखा, ताकि कल की डेट में जब मैं आगे ऐसी सिचुएशन में आऊँ तो मेरे को ये पता हो कि मैंने वहां वो गलती की थी, आज ये नहीं करूंगा, इससे मैं आगे बढ़
0: पाऊंगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चैलेंजेस की मैंने बात की, जाहिर सी बात है कि जब हम चल रहे होते हैं तो कुछ हमें दोस्त भी मिलते हैं, टीचर भी मिलते हैं, और कुछ ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो हमारे गाइड के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। नो डाउट आज हमें आप मिले हैं और ये जो टॉक है, लिसनर्स जो सुन रहे हैं, इससे बहुत बड़ा फायदा उनको मिलने वाला है। तो वो कौन कौन से ऐसे दोस्त हो सकते हैं, मैं एक गिनाना चाहूंगा, आपने मुझे गिनाया, एआई एक आपका अच्छा दोस्त बन सकता है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत सहायक हो सकती हैं और जिसकी वजह से आपके अंदर वो निखार निकल कर आएगा, अब आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, ताकि मार्केट में जब आप जाएंगे, जब आप उतरेंगे, तो आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा।
1: देखिए, आज के टाइम में सबसे अच्छा आपका दोस्त AI ही है, इफ यू आस्क मी। उसका रीजन है, देखिए, इट कैन बी अ बून और अ बेन, या तो वो खराब हो सकता है या बहुत अच्छा हो सकता है। ज्यादातर लोग, 90% लोग जो भी टेक्नोलॉजी है उसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। गलत तरीके से यूज करने का मतलब ये है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसमें। मैं ये बोल रहा हूं, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे को जिंदगी में वहां जाना है, तो पहला तो है विजन क्लैरिटी। अब विजन क्लैरिटी जहां आ गई, तो आपको उसके बाद, अब उसके लिए जितना भी कॉन्टेंट रिक्वायर्ड है, अच्छा कॉन्टेंट आगे बढ़ने वाला, उस पर आपको काम करना है। अच्छा, ये तो हो गया, जब मेरा ये पहला दोस्त हो गया AI। दूसरा, मेरी लाइफ में, मेरे को हमेशा लगता है कि आपकी लाइफ में एक मेंटर होना चाहिए, एक गाइड होना चाहिए, विद होम यू कैन बी फ्री, यू कैन गो एंड टॉक अबाउट एनीथिंग, एनी सेटबैक्स, एनी फेलियर्स, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, सो दैट वेन यू गो एंड टॉक टू दैट पर्सन कैन एक्ट लाइक अ वेंटिंग आउट जोन, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो और वो बंदा आपको ऐसे मदद करेगा कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि आपने क्या किया, और वो आपको एक सही रास्ते पे दिखा लेके आएगा। क्योंकि हर आज इंसान किसी भी स्टेज में, वो भले ही 5 साल का बच्चा है या 55 साल का इंसान है, वो कभी ना कभी कंफ्यूज होता है, वो जिंदगी में सेटबैक्स झेलता ही झेलता है, और उसको उस टाइम पे कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो उसको नॉन जजमेंटल होके सही रास्ता दिखा पाए और उसको बता पाए कि यहां तेरी गलती थी, यहां तू ऐसे इंप्रूव करता या ऐसा काम करता तो शायद
0: और बेहतर हो सकता था। राइट राइट राइट। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इन बातों से निश्चित तौर पर आप जरूर सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आप अपने आप को मोटिवेट करिए कि एक ऐसा सच्चा अच्छा मेंटोर तलाशिए, गुरु तलाशिए, एक अच्छा गाइड तलाशिए जो आपकी कमियों के बारे में ना बताए। आपको परेशान नहीं होना अगर वो आपको आपकी कमियां भी बता रहा है, आपको आपकी खूबियां भी वो बता रहा है और वो आपको कह रहा है कि कोई बात नहीं, गलती हुई है, दोबारा आप मेहनत करिए, तिबारा आप मेहनत करिए और एक ना एक दिन आप सक्सेस का जो स्वाद है चखेंगे जरूर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, ट्यून ऑल यू शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे आज हम मना रहे हैं 15 जुलाई को और इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरज शर्मा जी, जो कि आप डायरेक्टर हैं शारदा स्किल्स एंड करियर डिपार्टमेंट शारदा विश्वविद्यालय से। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: नया दौर फिल्म का एक गाना है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर बोझ उठाना। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे जो गेस्ट हैं धीरज शर्मा जी, जो कि आप डायरेक्टर हैं शारदा स्किल्स एंड करियर डिपार्टमेंट से, शारदा विश्वविद्यालय से आप आते हैं, और आज हम बात कर रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें हो चुकी हैं ब्रेक पर जाने से पहले। बातें हुई AI के बारे में, बातें हुई स्किल्स क्या है, कैसे अपने हुनर को हम आगे लेकर जा सकते हैं, पैशन की बात हुई, पेशेंस की बात हुई, और विजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो यकीन मानिए कि AI भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, मेंटोर भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। धीरज शर्मा जी जो कि डायरेक्टर हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर आज आप आए हुए हैं, शारदा स्किल्स और करियर डिपार्टमेंट से आप आते हैं। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं इससे हटकर थोड़ी बातें ये करना चाहूँगा कि नो डाउट एक विजन क्लियर था प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिसकी वजह से ये बात जड़ तक गई, जन जन तक गई। भारत में कौशल विकास से संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं, अगर आप हमें बता सकें कि कैसे एक व्यक्ति, एक यूथ जेन ज़ी इसका लाभ उठा सकता है, जब वो अपने आप को परिपक्व मानता है, जब वो कहता है कि हाँ आई कैन डू समथिंग, मैं सीख चुका हूँ, समझ चुका हूँ, प्लीज़ अगर आप उसके बारे में कुछ बता सकें।
1: देखिए भारत सरकार ने 2014 के बाद बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं, जैसे PMKY भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, NAPS है, स्किल इंडिया डिजिटल हब है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।
0: ओके
1: तो ये सरकार ये चाहती है कि हर यूथ, हर इंसान अपने आप को किसी ना किसी ऐसे स्किल को पहले देखे कि उसको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, उसके बाद वो जाके उसमें कोर्स करे। मैं दोबारा यही बात बोलूँगा, उसमें अपने आप को इतना अच्छा प्रोफिशिएंट बनाए ताकि आपको जो भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो वहाँ पे जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो आपको हैंड पिक कर पाएँ और आपको नौकरी दे पाएँ। और एक बार आपको नौकरी मिल गई और आप अपनी इंटरेस्ट का काम कर रहे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता ज़िंदगी में आगे बढ़ने से।
0: बहुत खूबसूरत बात आपने कही, ये तो आपने यूँ कहें कि मुझे एक बात कहने का मौका दे दिया कि अगर आप अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर काम करने में बड़ा मज़ा आता है दोस्तों, क्योंकि आप कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और सर मैं आपको भी बताना चाहूँगा, अपने दोस्तों को भी बताना चाहूँगा, क्योंकि चली वाली बात पर बात आ ही गई है। मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, उसके बाद मैंने मैकडोनल्ड में वर्क किया, लेकिन अंदर का जो कीड़ा होता है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है, या मीडिया फील्ड के लिए मैं बना हूँ, मीडिया फील्ड में आने के लिए मैंने ABCD सीखी, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, लेकिन जब आप अपना फील्ड का काम करते हैं, वाकई मैं इस बात को यूँ कहें कि सर माथे रखता हूँ। आपने बहुत सही सच्ची बात कही दोस्तों कि जब आप अपने मन का काम करते हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। निरंतर आप काम करते रहिए, निश्चित तौर पर आपको आपकी मंजिल मिलेगी जरूर। स्टार्टअप का जो रास्ता है सर, स्किल डेवलपमेंट के जरिए कितना आसान हो जाता है स्टार्टअप का रास्ता?
1: देखिए बहुत, अगर आपको स्टार्टअप करना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है कि किस फील्ड में जाना है। जिस फील्ड में जाना है उसमें आपका पैशन होना चाहिए, उसमें आप स्किलफुल होने चाहिए, उसमें आपको A to Z सारी नॉलेज होनी चाहिए, आप में सोशल स्किल्स होनी चाहिए, आप में इमोशनल स्किल्स होनी चाहिए, आप में कोलैबोरेटिव वर्किंग होनी चाहिए, आप में लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, आप में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो मैं बोलता हूँ लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, सोशल स्किल्स होनी चाहिए, आप में लाइकेबिलिटी स्किल्स होनी चाहिए, उस और आपका क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, जहां आप ये सोच पाओ कि मैं एक सोल्यूशन प्रोवाइडर कैसे बनूं। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं, आज की डेट में अगर हम अपने घर जाते हैं तो हमारी मम्मी हैं, हमारे घर वाले हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि घर पे मेड नहीं आ रही। तो एक इंसान है, उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की स्निबिट। अब स्निबिट क्या करता है, वो एग्रीगेटर है, जैसे ओला उबर टैक्सी का एग्रीगेटर है, स्निबिट मेड्स का एग्रीगेटर है, जहां आप 10 मिनट में आपके थ्रू मेड बुक कर लेते हो, वो एक घंटे में आएंगी आपका घर का सारा काम करके चले जाएगी, 100 रुपए चार्ज करेगी। तो ये सोल्यूशन प्रोवाइडर वाली क्वालिटी है, ये क्रिटिकल थिंकिंग वाली क्वालिटी है। ये प्रॉब्लम तो दुनिया में सालों साल से चल रही थी, लेकिन सोल्यूशन किसने निकाला, टेक्नोलॉजी के थ्रू आपने AI का ऐप बनाया, और किसी इंसान ने सोचा और उसने ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया।
0: क्या बात है,
1: सिंपल सा है ना। तो यही आपको सोचना है, और इसके लिए आपको क्या चाहिए है, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन।
0: क्या बात है, क्या बात है। मैं यूं कह सकता हूं कि एक जो टैगलाइन है जो अक्सर हमने सुनी है कि एक आइडिया आपकी दुनिया को बदल सकता है, तो सोचना बहुत जरूरी है। सकारात्मक दिशा में आप अपनी सोच को आप आगे लेकर जाइए, और कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि आप जब अच्छी संगत करते हैं तो निश्चित तौर पर निखार आता है। इसलिए कहा जाता है कि पढ़िए, किताबों से दोस्ती कर लीजिए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए, यूट्यूब पर ज्ञान की जो कहते हैं ना धारा बह रही है वहां से भी आप कुछ सीख सकते हैं। और जिस तरीके से सर ने हमें पहले बातें बताई, AI आपका दोस्त है और ये आपकी जॉब्स नहीं लेगा। आप अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं, हुनर को आगे लेकर जाइए। हुनर को आगे लेकर जाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, उन चीजों को सीखिए, समझिए, तो निश्चित तौर पर सब अच्छा होगा, बेहतर होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का और आखिर में कुछ और बातें सर से जानेंगे जरूर। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं धीरज शर्मा जी, जो कि शारदा स्किल्स एंड करियर सर्विस डिपार्टमेंट से आप आते हैं, आप डायरेक्टर हैं। तो सुनो शारदा 90.8 FM पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको मिलेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल इज़ शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: अक्सर आपने भी ये लाइनें सुनी होंगी कि हारिए ना हिम्मत ना बिसारिए राम, यानी कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है तो निश्चित तौर पर ईश्वर, खुदा, पिता परमेश्वर, आपके दोस्त, आपके कोलीग्स, आपके माता पिता, आपके साथ वो एक पिलर, एक हिम्मत का पिलर बनकर खड़े होते हैं। उनसे आप अपने मन की बातें शेयर जरूर करिए। जब आप मन की बातें शेयर नहीं करेंगे तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। जी हाँ, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का युवा आगे निकले, देश का नाम रोशन करे, और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि युवाओं का देश है, और यही वजह है कि 15 जुलाई को आज हम ये डे, यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस यज्ञ में आहुति देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं धीरज शर्मा जी, जो कि डायरेक्टर हैं शारदा स्किल्स एंड शारदा करियर से। आप शारदा विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू,
0: दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं हूँ आपका। आपने समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें कम समय में हमारे श्रोताओं तक आपने पहुंचाई। और अब मैं बात ये समझना आपसे चाहूंगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हम शारदा विश्वविद्यालय में हैं और जिस डिपार्टमेंट से आप आते हैं, आपका डिपार्टमेंट क्या क्या कर रहा है। नो डाउट आपके डिपार्टमेंट को मैं देखता हूं कि बहुत नज़दीकी से आपने काम किया है स्टूडेंट्स के लिए, वर्कशॉप्स आप लोग कराते रहते हैं, और रेडियो एक टॉक एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए भी आप ये बातें लिसनर्स तक जाएंगी। तो वो चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि हम शारदा स्किल्स जो हमारा डिपार्टमेंट है स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या कर रहा है और क्या क्या भविष्य में कुछ चीज़ें संभावित हैं।
1: देखिए, आप जब भी किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं, जैसे मैं अपना शारदा यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, हमारे पास 20,000 बच्चा एनरोल्ड है। अब ये जो 20,000 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये कोई फार्मा में है, कोई MBBS में है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मैनेजमेंट कर रहा है, कोई साइंसेस पढ़ रहा है, ये अलग अलग डोमेन है।
0: Right.
1: और इवेंचुअली हम क्या चाहते हैं एज अ पेरेंट, क्या चाहते हैं आपके पेरेंट्स, क्या चाहते हैं एज ए एजुकेटर, हम क्या चाहते हैं एज अ विश्वविद्यालय, हम क्या चाहते हैं कि आप जिंदगी में अच्छा करें। तो आप अच्छा तब करेंगे जब आप अपनी अपनी समझ सूझबूझ से अपनी अच्छी नौकरी करेंगे।
0: जी.
1: हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेते हैं, ताकि हम जब यूनिवर्सिटी से पास आउट हो तो हमारे पास एक अच्छी नौकरी हो।
0: बेशक,
1: तो जो नौकरी हो सकती है, एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है, अपने काम पे जाना है, अपना बिजनेस बनाना है, अपने फैमिली बिजनेस बनाना है, या दुनिया में जाके अपना नाम कमाना है, या कुछ भी काम करना है, तो ये सारे जो फंक्शंस है जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें डोमेन नॉलेज जो यूनिवर्सिटी पढ़ाता है दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट मोर देन दैट डोमेन नॉलेज वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज योर स्किल्स। एंड वॉट काइंड ऑफ स्किल्स आर वी टॉकिंग अबाउट? द स्किल्स विच इज अ स्किल ऑफ बींग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, जहां आपको जिंदगी भर सीखना है, आपको कॉम्प्लिसेंट नहीं होना है, आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे को जो आता है वो बहुत आता है, इससे आगे मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है। और क्या इंपॉर्टेंट है? इंटरपर्सनल स्किल्स, जैसे मैं लोगों से डील कर रहा हूं, मैं किसी भी फील्ड में हूं, भले ही मैं लॉ के फील्ड में हूं या मैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में हूं, अगर मेरे इंटरपर्सनल स्किल्स, अगर लोग मेरे को पसंद नहीं करते या मेरे को लोगों से प्रॉब्लम होती है, तो मैं जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। द वे आई कम्युनिकेट, जैसे मैं लोगों से बात कर रहा हूं, द वे आई लिसन, डू आई, एम आई अ गुड लिसनर और एम आई ओनली जस्ट लिसनिंग फॉर द हेक ऑफ इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूं? क्या मैं दूसरों की भावनाओं को समझ सकता हूं या नहीं समझ सकता हूं? क्या मैं दूसरों की भावनाएं समझ के तब अपना रिएक्शन देता हूं, या मैं आई एम ऑलवेज जिटरी इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग? तो ये वो स्किल्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम सिखाते हैं यहां अपने हर स्टूडेंट को, बिकॉज हम क्या चाहते हैं कि वो अपनी पसंद का काम जो करें उसमें बहुत आगे बढ़े।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बाकी दोस्तों, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज इस प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा कि कैसे हम अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि जिंदगी अपने आप में एक संघर्ष है और जिंदगी इम्तिहान लेती है। यकीन मानिए कि जिंदगी उन्हीं लोगों का इम्तिहान लेती है जिनको वो कुछ बनाना चाहती है। कोशिश करते जाइए, कहते यही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9:11, और आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। न टेंशन लेने की जरूरत, न किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है जनाब, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। जब आपको प्यार में भी धोखा मिलता है तो उसका मतलब यह नहीं कि आप जिंदगी को तबाह कर लें। हो सकता है कि आपका स्टार्टअप फेल हो गया, उसका मतलब यह है कि आप दोबारा कोशिश करिए, निश्चित तौर पर आपको आपकी मंजिल मिलेगी जरूर। अब कुछ कहना बनता नहीं है, बचा नहीं है मेरे पास। मैं शुक्रिया अदा करना दिखाना चाहूंगा हमारे जो गेस्ट स्पीकर रहे आज जिस विषय पर हमने बातें की, यूथ स्किल्स डे की बातें हुई। इस दिवस को हमने बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया और गेस्ट स्पीकर के तौर पर मेरे साथ जुड़े रहे मिस्टर धीरज शर्मा जी, जो कि आप डायरेक्टर हैं शारदा स्किल्स एंड करियर सर्विसेज के, शारदा विश्वविद्यालय से आप आते हैं। तो सर, दिल की गहराइयों से एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, संपर्क करना चाहे, ऑनलाइन कोई ऐसा मीडियम जो आप शेयर करना चाहें, ईमेल आईडी,
2: आप मेरा नंबर ले लीजिए।
0: अच्छा, तो नंबर प्लीज बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: 9313068580।
0: चलिए, आप इस तरीके से संपर्क सूत्र के माध्यम से आप संपर्क बना सकते हैं और बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी आप सर से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 120। शहर का एसटीडी कोड लगाना ना भूलेगा, 4060205। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in के जरिए आप हमसे मेल जोल बढ़ा सकते हैं। और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं आप लोगों के लिए खुले हुए हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा विश्वविद्यालय। फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।
3: जिंदगी, म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय रूहान मलिक, लिरिक्स बाय साकिब नबी, ओनली ऑन सुरुशादा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda. Suno Sharda.
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका, खेती किसानी में उपयोग होने वाली नई नई तकनीकों के बारे में, साथ ही मधुमक्खी पालन योजना की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका की। किसान मित्रों, पर्यावरण से हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बदले में हम क्या करते हैं? हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस पर्यावरण और इसकी अमूल्य संपदा का हनन करने पर तुले हैं। हमारे द्वारा की गई हर अच्छी और बुरी गतिविधि का असर पर्यावरण पर पड़ता है। इस प्रकृति में मानव ही सबसे अधिक बुद्धिशील प्राणी माना जाता है, इसीलिए पर्यावरण के संरक्षण में इसकी जिम्मेदारी सबसे अधिक बनती है, जिनमें खासकर हमारे युवा, क्योंकि युवा कल के भविष्य के पथ प्रदर्शक हैं और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण के बढ़ते खतरे के साथ युवा पीढ़ी से सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पहले भी थी, किंतु परिस्थिति की नाजुकता देखते हुए आज ही आवश्यकता बढ़ रही है। पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। युवा पीढ़ी के पास पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का सामना करने और स्थायी समाधानों को बढ़ावा देने की क्षमता है। अब बात आती है कि हमारे जो युवा साथी हैं वो पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकते हैं। तो युवा साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से उसका उपयोग करके पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। युवा साथी अपने दैनिक जीवन में स्थायी आदतें अपना सकते हैं, जैसे कि ऊर्जा की बचत करना, पानी का संरक्षण करना, साथ ही साथ कूड़े का प्रबंधन करना। और हमारे युवा साथी पर्यावरण परियोजनाओं में भाग ले सकते हैं, जैसे कि पेड़ लगाना, पार्कों की सफाई करना और पर्यावरण संबंधी अभियानों में शामिल होना। इसके अलावा युवा नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे युवा साथी पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही पर्यावरण संरक्षण में हमारे युवाओं की भूमिका की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं चमन कपासिया।
1: अरे मानस मानस

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे चमन कपासिया से ये उपदेश। किसान मित्रों, आज का जो युग है वो तकनीकी युग है। हर क्षेत्र में आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसी तरह हमारी जो खेती किसानी है उसमें भी आजकल नई नई तकनीकें आ गई हैं। इन तकनीकों का सीधे फायदा किसानों को मिल रहा है। ग्रीन हाउस खेती भी ऐसी एक तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से हम मौसमी और गैर मौसमी फसलों की खेती 12 महीने लगातार कर सकते हैं। ये तकनीक फसलों की रक्षा करने और उन्हें कीटों के साथ साथ बीमारियों से मुक्त रखने में सहायक है। ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करने के कई फायदे होते हैं। इनमें सब्जियां सर्दियों में पाले और गर्मियों में तेज धूप से सुरक्षित रहती हैं। इससे मौसम और कीट रोग जनित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें खेती करके फसलों को आवारा पशुओं से भी बचाया जा सकता है। वहीं ग्रीन हाउस में सब्जियों के लिए अनुकूल मौसम रहने से इनके खराब होने का खतरा भी नहीं के बराबर रहता है। इससे हमारे किसान भाइयों को फसल खराब हो जाने की वजह से होने वाला आर्थिक संकट नहीं झेलना पड़ता है। तो किसान मित्रों, आप भी ग्रीन हाउस खेती तकनीक का उपयोग करके बेमौसम की फसलें उगा सकते हैं और अधिक आमदनी ले सकते हैं। और किसान मित्रों, अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। किस्सा रहेगा हरिश्चंद्र तारामती का और गायक कलाकार हैं सुनील चौहान और टीना पटौदी। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे राजा हरिश्चंद्र और तारामती के किस्से से ये रागनी। गायक कलाकार थे सुनील चौहान और टीना पटौदी। किसान मित्रों, आपको बता दें कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों को खेती के साथ साथ ही पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान खेती के साथ साथ ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसी क्रम में सरकार की ओर से किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किसान भाई मधुमक्खी पालन करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और किसान मित्रों, आपको बता दें कि सरकार की ओर से मधुमक्खी पालन को मीठी क्रांति के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसान मित्रों, सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसका प्रयोग आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही बी कीपिंग स्वरोजगार से जुड़े हैं तो ये लोन आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के जरिए अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ा सकते हैं तथा इसे उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। और किसान मित्रों, अब बात आती है कि मधुमक्खी पालन स्वरोजगार शुरू किया जाए तो कितना खर्चा आएगा। तो किसान मित्रों, यदि आप शुरू में 10 पेटी से मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो इसमें करीब 35 से 40,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे मक्खियों की संख्या बढ़ने लगेगी, आपको मुनाफा अधिक होना शुरू हो जाएगा। आगे आपको सिर्फ मधुमक्खियों के लिए पेटियों की संख्या बढ़ानी होगी। इस तरह आप शुरुआती कुछ पैसा खर्च करके इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान मित्रों, आप भी खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, साथ ही साथ सरकार की जो ऋण योजना है उसका लाभ उठा सकते हैं और मधुमक्खी पालन से अपनी आमदनी और बढ़ा सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं लोकेंद्र सिंह और किस्सा रहेगा हीर रांझे का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे लोकेंद्र सिंह से ये रागनी, किस्सा था हीर रांझे का। और इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर होगी इसी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
2: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
3: हेलो, मैं हूँ डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजिली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
2: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
1: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।
4: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्ची की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन सुनो।

बेटी वाले को बहका दिया कि अच्छी दावत करनी चाहिए शादी में। तो दोस्तों शादी में जो दावत हुई उसमें खूब जोर लगा दिया बेटी वाले ने। मेहरबानों

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: चारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं का सम्मान करता है, उनके हक की बात करता है और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष श्रृंखला के तौर पर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसमें हमें सहयोग मिला है स्मार्ट संस्था का और जिन

0: बालिका या वधु, और बेटियां हैं तो वंश है यानी प्रजनन अधिकार। तो इस तरीके से हर एक मुद्दे पर हम खुलकर बातें कर रहे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में हमें दूसरे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी सहयोग मिल रहा है और ये भी सच है कि दूसरे स्टेशन हमारे खास प्रोग्राम को अपने यहाँ से ऑन एयर करते हैं। इसी समझौते के तहत हम दूसरे स्टेशन के कार्यक्रम आज यहाँ से ऑन एयर कर रहे हैं जिसमें हमें सहयोग मिल रहा है लाउड स्पीकर 90 FM का। आइए सुनते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम।
1: हिंसा को नो।

0: अत्याचार बहुत हुआ देवी, तुम अब सहना छोड़ दो। तुम में हुनर बहुत है, तुम खुद को कमजोर कहना छोड़ दो। मेरी ये लाइनें उन महिलाओं के लिए है जो हिंसा को स्वीकृति देती हैं, ना खुद कुछ उसके खिलाफ कहती हैं, ना किसी और को उसके खिलाफ खड़े होने देती हैं। उन्होंने कई प्रकार की घरेलू हिंसा को सामाजिक रिवाज का जामा पहनाकर खुशी खुशी स्वीकार किया है और अपनी दूसरी पीढ़ी को भी मजबूर कर दिया है इसे स्वीकारने में। हिंसा को नोके हमारी इस अगली कहानी का नाम है सामाजिक मान्यता और महिलाओं की स्वीकारिता। ये कहानी है सीमा की। सीमा 21 साल की है जो कि बीए की पढ़ाई कर रही है। वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। सीमा की शादी तय हुई है राकेश से। राकेश एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क है। सीमा के घर में उसके माता पिता और एक छोटा भाई है जो 12वीं में पढ़ता है। सीमा के पिता पास के स्कूल में शिक्षक हैं और माँ एक गृहिणी है। एक शाम,
1: सुनिए जी, सीमा अब अपनी बड़ी हो रही है।
2: हाँ, बड़ी तो हो रही है, तभी तो शादी भी करा रहे हैं उसकी।
1: हाँ, शादी से याद आया, राकेश जी से आपकी मुलाकात हुई थी क्या?
2: हाँ, कल मैं उनके ऑफिस गया था।
1: मिलना हुआ उनसे? क्या कह रहे थे वो?
2: हाँ, मिले और कह रहे थे कि उनके पिताजी ही सब जानते हैं।
1: अच्छा, और?
2: और क्या कह रहे हैं कि पिताजी ने जो दहेज के पैसे बोले हैं उससे एक पैसा कम नहीं होना चाहिए, और कह रहे थे कि सीमा को कह दीजिए घर से अब कम ही निकलें, शादी तय हो गई है तो उनके किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो बेइज्जती हो जाएगी।
1: सीमा वैसे भी कहीं निकलती नहीं है, एक पढ़ाई करने के लिए ही निकलती है बस।
2: बढ़िया है, समझदार है अपनी सीमा।
1: समझदार तो है ही, और बाकी लड़कियों की तरह गंदी आदतें भी नहीं है अपनी सीमा में।
2: अच्छा है वो बाकी लड़कियों से दूर ही रहे तो, नहीं तो उनकी ही तरह हो जाएगी।
1: अरे वो खुद ही नहीं जाती है, उसे तो बस घर के कामों में और पढ़ाई में ही मन लगता है।
2: चलो अच्छा है, अब तो शादी भी हो ही रही है तो आदत डाल ले घर के कामों की, पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है।
1: अच्छा सुनिए, सीमा की पढ़ाई अब ऑनलाइन हो रही है।
2: हाँ तो अच्छा है, पढ़ें।

0: पर उसके लिए उसको फोन की जरूरत है और अपने पास सिर्फ दो ही फोन है, एक आपका और एक बंटी का।
1: तो क्या घर भर के लिए फोन खरीद दूं?
0: नहीं, उसके लिए एक ले लेते हैं, जरूरत है उसको।
1: पागल हो क्या? जवान लड़की को फोन दे दूं ताकि वो दिन भर इधर उधर बात करे, कोई ऊंच नीच हो गई तब।
0: अरे अपनी सीमा समझदार है और बंटी को भी तो दिया है ना फोन।
1: आप सीमा की बराबरी बंटी से कर रही हो, हमारा बंटी लड़का है, वो कुछ भी कर सकता है। पर सीमा को फोन दे दिया और लोगों ने देखा उसे फोन यूज करते हुए, तो मोहल्ले में चार तरह की बातें होंगी।
0: हाँ, ये तो मैं सोची ही नहीं, सही कह रहे हैं आप।
1: तुम भी कुसुम एक नंबर की बेवकूफ हो, बच्चे जो जो कहते हैं मान लेती हो, कुछ खुद का भी दिमाग लगाया करो।
2: माँ मेरे फोन के बारे में बात की पापा से?
0: हाँ की थी।
2: क्या कहा उन्होंने, खरीदेंगे या नहीं?
0: मना कर दिया उन्होंने, और मुझे भी नहीं लगता कि फोन की जरूरत है तुम्हें। अभी कुछ दिनों में शादी हो जाएगी तो अपने पति से फोन ले लेना।
2: पर मेरी पढ़ाई?
0: बंटी का फोन लेकर पढ़ाई किया करो ना। बंटी सुनो, दीदी को फोन दे दो कुछ देर के लिए।
1: ये लो फोन। वैसे ये तुम्हारा मुँह नहीं है फोन चलाने लायक, पर माँ कह रही है तो दे देता हूँ।
2: माँ देख रही हो, मुझे मार रहा है।
0: अरे कोई नहीं, भाई है, जाने दो उसे।
2: बंटी फोन दो, अभी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई है, खत्म हो जाएगी तो मैं दे दूंगी ना।
1: चुपचाप दो, इतनी देर तक दिया था काफी है, अब मेरा टाइम है, मुझे गेम खेलना है।
2: बंटी दे दो ना यार, क्लास कंप्लीट होते ही दे दूंगी, गेम तब खेल लेना।
1: इतनी तेज थप्पड़ मारूंगा ना सही हो जाओगी।
2: तुम छोटे हो मुझसे, तुम मारोगी मुझे?
1: हाँ मैं मारूंगा।
2: मार के दिखाओ।
1: लो मार दिया, क्या कर लोगी?
0: अरे क्या कर रहे हो तुम लोग?
2: माँ माँ देखो ना, बंटी ने मुझे थप्पड़ मार दिया।
0: अरे क्यों मारा बंटी?
1: अरे मैं फोन मांग रहा था तो ये लड़ रही थी।
2: नहीं माँ, मैं तो बस कह रही थी कि मेरी क्लास खत्म हो जाएगी तब फोन लेना।
1: माँ ये फोन दे ही नहीं रही थी, उल्टा बहस कर रही थी।
2: नहीं माँ, ये हमेशा ही मुझे मारते रहता है।
0: अरे जाने दो, भाई है वो तुम्हारा, अगर एक थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हो गया, जाओ अपना काम करो।
3: अरे क्या हुआ रीमा, रो क्यों रही है?
0: अरे कुछ नहीं रमेश जी, यही सीमा है, बंटी अगर थोड़ा सा मार भी देता है तो केसुआ चूने लगता है इनका।
3: अरे बंटी क्यों मारेगा रीमा को, वो तो उम्र में छोटा भी है रीमा से।
0: अरे ऐसे ही मार देता है, बच्चा है अभी, पर ये महारानी एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है।
3: क्यों करे बर्दाश्त जब वो गलत नहीं है तो? आज बंटी के थप्पड़ को बर्दाश्त करने के लिए बोल रही हो, कल उसके पति राकेश की मारपीट को भी बर्दाश्त करने के लिए कहोगी?
0: अरे तो अगर राकेश जी भी मारते हैं तो क्या दिक्कत है इसमें, हक है उनका, पति हैं इसके, वो अमानत होगी ये उनके घर की। एक थप्पड़ अगर मार भी दिए तो क्या गुनाह कर दिया, जैसे मन वैसे रखे इसको वो।
3: अमानत होगी?
0: हाँ अमानत ही तो होगी, सीमा की जब शादी हो जाएगी राकेश जी से तो सीमा उनके घर की अमानत ही तो कहलाएगी।
3: क्या भाभी जी आप भी ना, अगर सीमा उनके घर की अमानत भी होती है तो राकेश जी को कोई हक नहीं बनता सीमा के साथ मारपीट करने का।
0: अरे मैं मारपीट करने की बात नहीं कह रही, पर अगर कभी गलती करती है सीमा तो राकेश जी को पूरा हक है सीमा को समझाने का।
3: हाँ समझा सकते हैं, पर मारने का हक नहीं होता है, और किसी के साथ हिंसा करने का भी हक नहीं होता।
0: अब अगर राकेश जी या बंटी सीमा को कभी थोड़ा बहुत मार दिए या गाली दे दिए तो ये हिंसा थोड़े क्या लाएगी?
3: बिल्कुल हिंसा होती है।
0: अच्छा अब घर में भाई है, बाप है या पति है तो उसका हक नहीं है घर की औरतों को डांट डपट के रखने का?
3: गलती पर समझाया जा सकता है, पर प्रताड़ित नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो, माँ बाप हो, भाई बहन या फिर पति ही क्यों ना हो।
0: प्रताड़ित करना क्या हुआ, कौन सा हम सीमा का गला दबा रहे हैं?
3: भाभी आप भले ही सीमा का गला दबाकर मार नहीं रही हैं, पर आप जो कर रही हैं उसे भी एक हिंसा कहते हैं।
0: हिंसा कहते हैं?
3: हाँ ये भी एक प्रकार की हिंसा ही है।
0: अच्छा तो आपके कहने का मतलब है कि हम लोग सीमा के साथ हिंसा कर रहे हैं?
3: आप भले ही वो जानबूझकर नहीं कर रही हैं, पर जो भी आप कर रही हैं वो भी हिंसा ही है।
0: अब ये हिंसा हो या ना हो, पर सीमा अब हमारे बंटी की तो बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकती।
3: ये बात आप बिल्कुल गलत कह रही हैं भाभी जी, आप एक औरत होकर भी ये सोच रखती हैं।
0: ये मेरी ही सोच नहीं है, सबको सहना पड़ता है, मैं भी तो सहती थी, मेरी जो सास है उन्होंने भी सहा, मेरी जो माँ है उन्होंने भी सहा, ये सीमा कोई आज स्पेशल नहीं है।
3: बिल्कुल स्पेशल है, और हर लड़की और औरत स्पेशल ही होती है, और जब तक आप ये सोच रखेंगी एक औरत होकर भी, तो बाकी लोगों को कैसे रोकेंगी? और ये सब भी तो एक हिंसा का रूप है।
0: हाँ, आप बात तो ठीक कर रहे हैं, पर हम तो शुरू से यही देखते आए हैं, सब सहते आए हैं, तो हम तो यही जानते हैं कि मर्दों का अधिकार होता है औरतों पर। वो अपने अपने हिसाब से औरतों को रखते हैं, फिर चाहे वो भाई हो, बाप हो या पति हो, सब अपने अपने तरीके से औरतों पर राज करते हैं। हमारी अम्मा क्या, उनकी भी अम्मा के जमाने से चला आ रहा है, तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं?
3: तो उन्हीं तरीकों को तो तोड़ना है। औरत भी समाज का हिस्सा होती है, उन्हें भी हक है अपने हिसाब से रहने का।
0: भैया, आपने तो हमारी आंखें खोल दी, अब मैं भी अपनी बेटी को सशक्त बनाऊंगी।
3: ये हुई ना बात, तो चलिए मेरे साथ मिलकर कहिए,
4: सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और बोलो हिंसा कोनो।

कुसुम जी को तो समझ में आ गई बात। आशा करते हैं आप लोग भी हमारी इस कहानी के माध्यम से हिंसा की सामाजिक मान्यता और महिलाओं की स्वीकार्यता को समझे होंगे और इस प्रकार की किसी भी हिंसा को बढ़ावा ना देंगे और ना ही किसी को देने देंगे। और आप सब कहेंगे,

तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
4: पहली से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित
5: टीबी रोगी के साथ रहते हों,
4: मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग।
3: तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
6: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
7: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी। अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें। यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे जानते हैं? पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे? शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की। नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की। जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है। कैसे जानते हैं? शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हरकत है और हरकत में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है। बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: हजार है, आता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का तार है।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा 90.8 एफएम महिलाओं का सम्मान करता है, उनके हक की बात करता है और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष श्रृंखला के तौर पर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसमें हमें सहयोग मिला है स्मार्ट संस्था का और जिन विषयों पर समय दर समय हम बात कर रहे हैं वो विषय हैं जैसे कि मेरी पत्नी, मेरा अधिकार, दहेज प्रथा या हत्या, कैसे बचें मनचलों से, कच्ची उम्र की शिक्षा, माँ मुझे बाहर जाना है, पितृसत्ता, असमान व्यवहार, असमान दीक्षा, खतना धर्म नहीं दर्द, बालिका या वधु, और बेटियां हैं तो वंश है यानी प्रजनन अधिकार। तो इस तरीके से हर एक मुद्दे पर हम खुलकर बातें कर रहे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में हमें दूसरे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी सहयोग मिल रहा है और ये भी सच है कि दूसरे स्टेशन

0: हमारे खास प्रोग्राम को अपने यहाँ से ऑन एयर करते हैं। इसी समझौते के तहत हम दूसरे स्टेशन के कार्यक्रम आज यहाँ से ऑन एयर कर रहे हैं, जिसमें हमें सहयोग मिल रहा है लाउड स्पीकर 90 FM का। आइए सुनते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम।
1: हिंसा को नो,

सभी श्रोतागणों को नमस्कार। हिंसा, ये शब्द सुनकर आप सबके दिमाग में थप्पड़, गालियां, मारपीट ही आता होगा, पर कई बार हिंसा अपना ऐसा बहुरूपिया रूप धारण करती है कि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि इस घटना में भी हिंसा हो सकती है। जरूरी नहीं कि हिंसा शारीरिक ही हो, हिंसा के कई प्रकार हो सकते हैं। कई बार औरतें उस हिंसा को भी उसे अपने जीवन का हिस्सा समझ के नजरअंदाज कर देती हैं। कुछ ऐसी ही सामाजिक कुरीतियों के बारे में हम आप सब के साथ एक नाटक साझा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है जिंदगी के पड़ाव और हिंसा। ये कहानी है रेखा की। रेखा बीबीए की स्टूडेंट के साथ साथ पास की एक कंपनी में काम भी करती थी। रेखा के घर में रेखा की माँ माधुरी, पिता राकेश और एक बड़ा भाई विकी है। रेखा पढ़ने में बहुत ही होनहार थी और ऑफिस में भी अपने काम को अच्छे से करती थी। एक सुबह

0: माँ पापा कहाँ हैं?
1: हाँ वो ऑफिस गए हैं।
0: अरे मैं भोर में ही उनके कमरे में गई थी, तब भी वो अपने कमरे में नहीं थे, उस वक्त कहाँ थे वो?
1: अरे वो आज से टहलना शुरू किया है ना उन्होंने।
0: अरे वाह, पापा भी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, बढ़िया है।
1: हाँ आज से शुरू तो किया है, देखो आगे भी करते हैं या नहीं।
0: अरे शुरू तो किया है ना। अच्छा आप ये बताइए, मंजू दीदी आज काम करने क्यों नहीं आई?
1: आई थी पर मैं ही उसे वापस भेज दी।
0: वापस भेज दिया, क्यों क्या हो गया?
1: अरे बेचारी को बहुत चोट लगी थी।
0: चोट लगी थी, क्यों क्या हो गया? ठीक तो है ना वो, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना उनका?
1: नहीं नहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसका पति महेश है ना, कल रात में शराब पीकर आया था, मंजू और उसके बच्चे को बहुत मारा उसने।
0: क्या मंजू दीदी के पति ने उनको मारा?
1: हाँ वो तो अक्सर ही मारते रहता है उसे।
0: अक्सर ही मारता रहता है? मंजू दीदी ने कभी इसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की?
1: पगला गई हो क्या, खिलाफ जाएगी उसके तो और मारेगा।
0: अरे तो कब तक वो ये सब सहती रहेंगी?
1: अब तो शादी हुई है, उसी से तो झेलना तो पड़ेगा ही।
0: ऐसे कैसे झेलना पड़ेगा, पति है तो क्या हुआ, कुछ भी करेगा। आखिर मंजू दीदी भी तो इंसान है, उनको भी तो दर्द होता है।
1: हाँ पर बेटा औरतों को ये सब लेकर चलना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, सबका अपना अपना नसीब होता है।
0: नसीब वसीब की बात नहीं होती है माँ, ये तो अपराध है अपराध।
1: तुमको बड़ा पता है अपराध है।
0: हाँ माँ ये घरेलू हिंसा है और इसके खिलाफ मंजू दीदी को जाना चाहिए।
1: अच्छा कहाँ जाना चाहिए तुम्हारी मंजू दीदी को?
0: पहले तो वो अपने पति से बात करें और उनको समझाने की कोशिश करें कि ये सब जो घरेलू हिंसा है, जो भी मार पीट है, उसको रोक दे। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो अपने घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी उनके घर के मालिक हैं, उनसे बातचीत करें।
1: अच्छा अगर फिर भी न माने तो?
0: अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो पुलिस की सहायता ले या किसी एनजीओ की भी मदद ले सकती हैं वो।
1: अच्छा मतलब तुम मंजू को पूरा क्रांतिकारी बना के रहोगी?
0: क्रांतिकारी की बात नहीं है माँ, ये हक है मंजू दीदी का, वो भी अपने पति की तरह आराम से बिना डरे जी सकती हैं।
1: अभी भी वो जीती ही है।
0: जीती तो वो है पर हर रोज मारपीट और घरेलू हिंसा के साथ।
1: अच्छा तुम मुझे ये सब ज्ञान ना दो, जाओ अपना काम करो।
0: मैं चली जाऊंगी माँ, लेकिन आप एक वादा करिए कि आप मंजू दीदी से इसके बारे में जरूर बातचीत करेंगी और उनको समझाने की कोशिश करेंगी कि वो अपने पति से इसके बारे में जरूर बातचीत करें और अपने पति को समझाएं कि वो इस तरह की घरेलू हिंसा बिल्कुल भी ना करें। और अगर उनका पति फिर भी नहीं मानता है तो वो पुलिस की या किसी एनजीओ की मदद जरूर ले।
1: हाँ हाँ ठीक है मैं बात कर लूंगी।
0: अच्छा माँ मुझे आपसे एक और बात कहनी है।
1: क्या?
0: माँ कॉलेज जाते वक्त ना रास्ते में कुछ लड़के मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं तंग आ गई हूँ।
2: रेखा की ये बातें उसका भाई विकी सुन लेता है।
3: जब कपड़े पहनने का ढंग नहीं होगा, जीन्स टॉप पहन के जाओगी तो लोग तो बोलेंगे ही। माँ कल से इसे बोलो कॉलेज सिर्फ सूट में ही जाएगी, इसे जीन्स पहनना बंद करवाओ।
0: पर भैया मेरे कॉलेज में लगभग सारी ही लड़कियां जीन्स पहन के आती हैं और मुझे जीन्स पहनना बहुत पसंद है। प्लीज भैया उन दुष्ट लड़कों की वजह से मेरा जीन्स पहनना मत बंद कराओ।
3: मैंने कह दिया ना कि नहीं पहनोगी तो बस नहीं पहनोगी।
0: भैया जीन्स बहुत कंफर्टेबल होता है।
3: चुपचाप जो कह रहा हूँ सुनो, ज्यादा जुबान न लड़ाओ। माँ इसके लिए आज ही सूट खरीदो।
0: पर भैया
1: चुप क्यों नहीं हो जाती, अभी दो थप्पड़ लगा देगा तो ठीक हो जाओगी। और क्या गलत कह रहा है वो?
0: माँ तुम भी?
1: हाँ उम्र हो गई है, अभी जींस उन्स पहनना बंद करो समझी। और हाँ रास्ते में हंसी ठिठोली करना भी बंद करो, लड़की हो थोड़ा कायदे से रहो।
0: माँ प्लीज ना, क्या कह रही हो तुम?
1: विकी ने कह दिया ना, बस अब जाओ काम करो अपना।
2: अगले दिन रेखा अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके अपने ऑफिस जाती है। रेखा के साथ काम करने वाला रोहित रेखा को देखता है।
4: आज तो एकदम आइटम लग रही हो, कहाँ खैर ढाना है? अगर खाली हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए खाली रहता हूँ।
0: ये क्या बदतमीजी है रोहित, तमीज से बात किया करो यार, साथ में काम करते हो इसलिए कुछ बोलती नहीं हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम सिर पे ही चढ़े जाओ।
2: इतने में रेखा का बॉस राजीव उसे अपने केबिन में बुलाता है। अरे वाह रेखा, आज तो बहुत कमाल की लग रही हो।
0: थैंक यू सर।
2: अच्छा ये फाइल आके जरा मुझे समझाना।
0: सर ये जो हमारे क्लाइंट है शर्मा जी, उनका प्रोजेक्ट है और शर्मा जी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट है।
2: इम्पोर्टेंट तो तुम भी हो मेरे लिए, और ये जो तुम्हारे सीने पे जो तिल है ना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम सूट ही पहन के आया करो, बहुत फपता है तुम पे।
0: सर जो शर्मा जी हैं उनको ये प्रोजेक्ट 12 से पहले चाहिए।
2: शर्मा जी को ये फाइल हम दे देंगे, पर तुम कब दे रही हो? अरे मिश्रा जी वाली फाइल।
0: सर मिश्रा जी वाली फाइल भी कम्प्लीटेड है, वो भी दे दूंगी।
2: और फिर राजीव उसे आपत्तिजनक हरकत करने की कोशिश करता है। इतने में कबीर अंदर आता है। कबीर बाहर से ये सारी हरकतों को देखता रहता है, लेकिन बात ज्यादा गंभीर होने पर उससे रुका नहीं जाता।
3: सर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तब से देख रहा हूँ आप रेखा को परेशान कर रहे हैं, और रेखा तुम भी, तुमने बाहर रोहित को इसीलिए डांटा है ना, फिर राजीव सर को क्यों नहीं बोल रही?
0: मैं तो वो।
2: कबीर ये क्या बदतमीजी है, बिना पूछे तुम अंदर कैसे आ गए, और ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमको पता है ना तुम किससे बात कर रहे हो? बॉस हूँ तुम्हारा, अभी फायर कर दूंगा।
5: सर आप बॉस है ठीक है, मैं भी इज्जत करता हूँ, पर आप तब से रेखा के साथ बदतमीजी किए जा रहे हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो लड़की डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही है।
2: तुम बड़े मसीहा बने हो, जाओ जाके अपनी नौकरी बचाओ पहले।
5: सर आपको पता है ये जो आप कर रहे हैं एक प्रकार की हिंसा है, अभी रेखा चाहे तो आप पर केस कर सकती है, और आप सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में अंदर भी जा सकते हैं। तो आप अपना जीवन बचाइए, हमारी नौकरी की चिंता छोड़िए।
2: बहुत बोल रहे हो तुम, रेखा को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम्हें ही सारी दिक्कत है।
0: सर मुझे प्रॉब्लम है, आप बॉस हैं इसलिए मैं नहीं बोल पा रही थी, पर अब कबीर के इस सपोर्ट से मुझे भी हिम्मत आ गई है।
2: ओह तो क्या कर लोगी?
0: ये आपकी पहली और आखिरी गलती है इसलिए छोड़ रही हूँ, अगर दोबारा ऐसा किया ना तो पुलिस केस कर दूंगी।
5: समझे सो कॉल्ड बॉस, मामला गंभीर पड़ सकता है, और स्त्रियों के भक्षक नहीं रक्षक बनो। और तुम रेखा अपने साथ हो रही हिंसा को समझो, और सामने कोई भी हो उसके खिलाफ बोलो।
0: ओके कबीर, थैंक यू सो मच यार।
5: ये हुई ना बात, तो चलो मेरे साथ कहो, सुनो समझो चुप्पी तोड़ो, और बोलो हिंसा को नो।

चलिए, रेखा को तो समझ आ गया कि उनको अपने साथ हो रही हिंसा के विरोध जहाँ चाहिए वहाँ करना चाहिए। तो हम सब के घर के आस पड़ोस में जरूर कोई ना कोई ऐसे लोग मिलेंगे, तो हम सब का ये कर्तव्य है कि अपनी सोच के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदलने की कोशिश करें और महिलाओं को भी आत्मसम्मान से जीने का मौका दें। चलिए, आप सबसे इजाजत लेने का समय आ चुका है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।

0: मैं अब अनुमति लेना चाहता हूँ, बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
3: नमस्कार, मैं अजीत। स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
2: वली उल्ला अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और सुल्तान अंसारी जी ने पुराना तालाब डुमराव से सुविचार भेजा है और वो लिखते हैं,
3: अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार झुककर खुश होता है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खूबसूरत विचार के लिए। अब सुनते हैं संदेश और श्रोताओं के नाम।
3: बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी।
2: गांव डांगरी, जिला जैसलमेर से बाबूराम जयपाल।
3: मेन रोड तेल्हारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता डिंपल देवांगन।
3: और श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
2: जी,
3: तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला
2: ये भी जानिए। आज हम जानेंगे महान आविष्कारक और रसायन शास्त्री अल्फ्रेड नोबेल के जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिन्होंने उनके जीवन की धारा ही बदल दी। उनका पूरा नाम था अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल।
3: उनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ था। वे एक स्वीडिश रसायन शास्त्री, आविष्कारक, इंजीनियर और व्यवसायी थे।
2: जी।
3: उन्हें डायनामाइट का आविष्कार करने के साथ साथ नोबेल पुरस्कारों की स्थापना के लिए अपनी संपत्ति दान करने के लिए भी जाना जाता है।
2: युवा नोबेल ने विज्ञान, विशेष रूप से रसायन विज्ञान और भाषाओं के लिए कम उम्र में ही रुचि दिखाई। वे मात्र 18 वर्ष की आयु में ही 6 भाषाओं में पारंगत हो गए थे। वे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, लैटिन और स्वीडिश भाषा को धारा प्रवाह बोल सकते थे।
3: श्रोताओ, 24 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला पेटेंट दाखिल किया।
2: जी।
3: किसी व्यक्ति का मात्र 24 वर्ष की आयु में ही किसी आविष्कार का पेटेंट दाखिल करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी।
2: जी।
3: सर नोबेल का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार डायनामाइट था, जिसका आविष्कार नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग करके किया गया था। ये एक विस्फोटक था जिसे 1867 में पेटेंट कराया गया था।
2: डायनामाइट बेहद शक्तिशाली विस्फोटक था जो विशेषकर खदानों में चट्टानों को तोड़ने में बहुत प्रभावी था। डायनामाइट के आविष्कार से राष्ट्रों को बहुत फायदा हुआ क्योंकि अब खनिज पदार्थों को प्राप्त करना बहुत आसान हो गया।
3: जी हाँ श्रोताओ, लेकिन डायनामाइट का आविष्कार बहुत हानिकारक भी था क्योंकि युद्ध में इस विस्फोटक के प्रयोग से सैकड़ों लोगों की जाने जा सकती थी।
2: जी।
3: इस आविष्कार के कारण उनकी कटु आलोचना भी होने लगी।
2: जी।
3: ऐसा कहते हैं कि जब वे किसी सार्वजनिक जगह पर जाते थे तो लोग चिल्लाने लगते थे, शैतान आ गया, शैतान आ गया,
2: हत्यारा आ गया, हत्यारा आ गया, इसने अपने सगे भाई को भी मार डाला है।
3: श्रोताओं, उन्हें हत्यारा इसलिए भी लोग कहते थे कि डायनामाइट के आविष्कार के लिए जब अल्फ्रेड नोबेल अपने भाई एमिल के साथ प्रयोग कर रहे थे तो एक भयंकर विस्फोट हुआ और उसमें एमिल सहित 5 लोगों की जान चली गई थी।
2: अपमान और कटु आलोचनाओं से अल्फ्रेड बहुत दुखी रहने लगे थे।
3: 1888 में उनके भाई लुडविक की मृत्यु हो गई, लेकिन एक फ्रांसीसी अखबार ने गलती से अल्फ्रेड नोबेल का नाम छाप दिया और बेहद अपमानजनक ढंग से लिखा,
2: मौत का व्यापारी मर चुका है। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल, जो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से अधिक लोगों को मारने के तरीके खोजकर अमीर बन गए थे, कल मर गए।
3: श्रोताओं, इस प्रकार की बहुत सारी कटु आलोचनाएं अखबारों में छपने लगी। इन बातों से उनका दुख और ग्लानि भाव बहुत अधिक बढ़ गया। डायनामाइट के आविष्कार के कारण उन्होंने अथाह संपत्ति कमाई और यूरोप के सबसे धनी लोगों में गिने जाने लगे। उन्होंने एक फैसला किया।
2: अपनी मृत्यु से एक वर्ष पहले उन्होंने 27 नवंबर 1895 को पेरिस के स्वीडिश नॉर्वेजियन क्लब में अपनी अंतिम वसीयत पर हस्ताक्षर किए और अपनी सारी संपत्ति का 94% एक संस्था को दान कर दिया जो आज रॉयल स्वीडिश एकेडमी के नाम से जानी जाती है।
3: संपत्ति से जो बहुत बड़ी धनराशि के रूप में सूद या इंटरेस्ट आता है, उसी राशि से यह संस्था आज नोबेल पुरस्कार का आयोजन करती है।
2: नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो साहित्य, शांति, चिकित्सा, भौतिकी, अर्थशास्त्र और रसायन के क्षेत्र में मानवता के कल्याण हेतु उल्लेखनीय काम करने वालों को दिया जाता है।
3: 10 दिसंबर 1896 को इटली में 63 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया।
2: नोबेल पुरस्कार देने का काम सन 1901 से शुरू हुआ।
3: आशा है श्रोताओं, आपको हमारी ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। तो अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
2: प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अंतिम वसीयत पर हस्ताक्षर कहाँ और कब किए थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं।
3: अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अंतिम वसीयत पर हस्ताक्षर कब और कहाँ किए थे? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर।
2: audio@cit.nic.in है हमारी ईमेल का पता, तो उत्तर जरूर भेजिएगा।
3: और श्रोताओ, अब बारी है कार्यक्रमों की, तो तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम मोर और जानते हैं हमारे इस राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बहुत सी रोचक बातें।
4: अरे
5: ये कौन बोला? यहाँ वाला बिल्ली कहाँ से आई?
4: मैं हूँ वो बिल्ली जिसको तुम ढूंढ रहे हो।
5: दीदी आप?
4: मैंने पूछा म्याऊं और मैं आ गई।
6: क्या पूछा दीदी?
4: मैंने पूछा म्याऊं यानी मैं आऊं।
5: म्याऊं।
7: अरे ये किसकी आवाज है?
4: भाई तुम्हारे सवाल का जवाब है इस पहेली में।
5: कौन सी पहेली दीदी?
4: तो सुनो पहेली। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, ये उसी पक्षी की आवाज है। बूझो तो जाने।
5: दीदी एक पक्षी ऐसा
4: जिसकी दुम पर पैसा, अब बताओ वो है कौन?
7: मैं तो इतना जानती हूँ कि ये आवाज तोते या कौए की नहीं है।
5: हाँ दीदी मुझे तो ये मोर की आवाज लगती है।
4: शाबाश, बिल्कुल ठीक बोला टिंकू। बच्चों ये मोर की आवाज है। अच्छा ये बताओ तुमने कभी मोर देखा है?
7: दीदी मैंने अपनी नानी के घर में देखा है।
4: अच्छा
7: उसकी लंबी और नीली गर्दन होती है। अरे हाँ दीदी उसके सिर पर एक फूल भी होता है।
4: हाँ। बिल्कुल ठीक, उस फूल को हम मुकुट यानी ताज या कलगी भी कहते हैं। और जानते हो बच्चों एक और मजेदार बात है मोर की।
5: वो क्या है दीदी? बताइए ना।
4: बताती हूँ मोर के पंख भी लंबे और बहुत सुंदर होते हैं। मोर के इन्हीं पंखों से बनते हैं सुंदर मोरछल।
7: मोरछल क्या होता है दीदी?
4: मोरछल है मोर की पूंछ के पंखों या परों को इकट्ठा बांधकर बनाया हुआ पंखा।
5: अच्छा।
7: ओहो, मोरछल यानी मोर के पंखों को इकट्ठा बांधकर बनाया हुआ पंखा। हाँ समझी।
4: अब मुझे ये बताओ कि प्यारा प्यारा सुंदर मोर खाता क्या है?
5: दीदी दाना खाता है।
7: दीदी मोर अनाज खाता है।
4: बिल्कुल ठीक बच्चों, मोर अनाज के अलावा कीड़े मकोड़े भी खाता है।
7: अच्छा
5: दीदी कीड़े मकोड़े?
4: हाँ, और एक और मजेदार बात तो ये है कि मोर छोटी मोटी छिपकलियाँ और सांप को भी खा जाता है।
5: अरे बाप रे, सांप भी खा जाता है मोर? मोर को सांप से डर नहीं लगता दीदी?
4: अच्छी कैसे डरेगा, मोर को तो सांप का दुश्मन माना जाता है।
5: वो कैसे दीदी?
4: बताती हूँ, तो आओ सुनो ये कहानी।
5: हाँ दीदी कहानी सुनाइए।
4: सुनाती हूँ, बात बहुत पुरानी है। एक बहुत बड़ा जंगल था, उसी जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था।
7: अच्छा।
4: एक सुंदर सी प्यारी सी चिड़िया भी उसी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। लेकिन बच्चों उसी पेड़ के नीचे एक बिल में रहता था एक लंबा काला सांप। जब भी चिड़िया अंडे देती और उससे छोटे छोटे बच्चे निकलते तो वो सांप पेड़ पर चढ़कर उन बच्चों को खा जाता था। बेचारी चिड़िया बहुत दुखी रहती थी। उसने ये बात अपने सभी मित्रों को भी बताई। एक दिन सभी पक्षी मिलकर मोर के पास गए। काले काले बादल आसमान में छाए हुए थे और वर्षा होने वाली थी। सभी पक्षी जब मोर के पास गए तो क्या देखते हैं कि मोर अपने सुंदर पंखों को फैलाकर नाच रहा है। सभी पक्षियों को एक साथ वहां देखकर मोर ने नाचना बंद कर दिया।
7: अच्छा।
4: और उनके पास आया। सभी पक्षियों ने जब उसे अपनी समस्या बताई तो वो उनकी मदद करने को तैयार हो गया। वो सभी पक्षियों के साथ चल पड़ा उसी बरगद के पेड़ की ओर। सभी उस पेड़ के पास पहुंचे मोर उस पेड़ में बने घोंसले के पास छिपकर बैठ गया।
7: अच्छा?
4: अचानक एक आवाज सुनाई दी।
5: ओ, दीदी किसकी आवाज थी?
4: ये आवाज थी सांप की। सभी ने देखा कि वही काला सांप अपने बिल से निकला। सब बिल्कुल शांत थे, एकदम चुपचाप। वो सांप अब धीरे धीरे रेंगते हुए घोंसले की ओर बढ़ने लगा। घोंसले में चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे। अब सांप घोंसले के बिल्कुल पास आ गया। उसे ये बिल्कुल पता नहीं था कि घोंसले के बिल्कुल पास पत्तों में मोर भी छुपा बैठा है। जैसे ही सांप ने चिड़िया के बच्चों को खाने के लिए अपना मुंह खोला, मोर ने आवाज लगाई और उस पर झपट्टा मारा। अपनी तेज चोंच से मोर ने सांप पर हमला कर दिया। सांप भी फुफकारा। सांप बिल्कुल थक गया था। सभी पक्षी खुशी से शोर मचाने लगे। अब सांप समझ गया कि उसका बचना मुश्किल है। वो गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा। उसने कहा कि अब वो चिड़िया के बच्चों को नहीं मारेगा। मोर ने सभी पक्षियों से पूछा। सभी पक्षियों ने कहा इसे एक मौका और देना चाहिए। तब मोर ने सांप को छोड़ दिया और ये समझा दिया कि अगर वो दोबारा ऐसा काम करता हुआ पकड़ा गया तो वो सांप को मारकर खा जाएगा। अच्छा ये बताओ कैसी लगी कहानी?
5: बहुत अच्छी दीदी, बहुत मजेदार थी। दीदी दीदी एक बात बताइए।
4: बोलो।
5: क्या हम मोर को पालतू बना सकते हैं?
4: हाँ, इसे पालतू भी बनाया जा सकता है। यदि तुम भी मोर को प्यार करोगे, उसे दाना दोगे, उसके साथ खेलोगे तो वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा।
5: अच्छा?
4: और तुम जब भी उसे बुलाओगे तो वो आ जाएगा।
7: उसे कैसे बुलाएंगे?
5: कुछ इस तरह से।

0: अरे इतनी दूर क्यों चल रही है? चल हाथ पकड़ मेरा, दोपहर में लेने आऊंगा मैं, कल की तरह अपने आप न चल दियो घर।
1: मम्मा, माँ।
2: बोलो मेरी बच्ची, क्या हुआ?
1: माँ।
2: क्या हुआ?
1: माँ वो
2: बता ना।
1: माँ वो माँ मुझे तीनू काका अच्छे नहीं लगते, उनसे बोल दो कि मुझे वो स्कूल छोड़ने ना जाए।
2: क्यों भला, क्या हुआ?
1: माँ पता नहीं वो अजीब तरह से छूते हैं।
2: अरे रोज तुझे स्कूल छोड़ते हैं, रास्ते में ध्यान तो रखेंगे ना। तू बेकार बातें मत कर।
3: बच्चों की बात को नजरअंदाज मत कीजिए, धैर्य से उनकी बात सुनें और समझने का प्रयास करें।
4: लापरवाह मत रहिए, आपका मार्गदर्शन और सहयोग बच्चे का अधिकार है।
5: और अब प्रस्तुत है लगातार दो कार्यक्रम, एक पैर और ढेरों हाथ पेड़।
6: आज मौसी से बहुत बड़ी पहेली पूछेंगे, मौसी बता नहीं पाएंगी।
7: बता देंगी,
6: नहीं बता पाएंगी।
7: पहले वाला सवाल
6: बता देंगी,
7: नहीं बता पाएंगी।
6: मौसी के लिए ये सवाल बहुत ही बड़ा है,
7: सॉरी।
2: हाँ बच्चों, क्या हो रहा है? ओहो, नमस्ते नमस्ते, कुछ खुसर पुसर चल रही है, मतलब कोई शैतानी आ रही है तुम लोगों के दिमाग में।
7: पहेली पूछो।
2: अभी तो मैं आई हूँ, अभी मुझे बैठने तो दो, फिर पूछ लेना पहेली।
7: बैठ जाओ।
2: बैठ जाओ।
7: हाँ।
2: अच्छा ठीक है, लो बैठ गई। हाँ।
7: जिसमें मुश्किल से गिर जाते उसमें निकल नहीं पाते, वो क्या है? उसमें निकल नहीं, जिसमें मुश्किल से गिर जाते पर निकल नहीं पाते, वो क्या है?
2: मुश्किल से गिर जाते हैं पर निकल नहीं पाते, ये तो सच्ची में मुश्किल वाली बात हो गई भाई। मेरी

0: हीरो हाथ खड़ा में रहता हूँ दिन रात, ये कोई राक्षस है क्या? मैं तो डर गई भाई।
1: आगे सुनिए।
0: हाँ सुनाओ।
1: मौसी डर गई।
2: एक पैर और ढेरों हाथ, खड़ा मैं रहता हूँ दिन रात, सांस मैं लेता दुनिया जीती
0: है। सांस मैं लेता हूँ और जीती दुनिया है। अच्छा, आगे बोलो आगे।
2: सांस मैं लेता दुनिया जीती, मुझ पर चिड़ियों का घर साथ, धूप में अपना बनाता खाना, हरा रंग है मुझको खास,
0: ठीक।
2: बादल से है मेरी दोस्ती,
0: कुछ कुछ समझ में आ रहा है।
2: रेगिस्तान ना आता पास,
0: बता दूं? पक्की बात? सही जवाब दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा?
1: पारी
0: दोगे?
1: हाँ।
0: पक्का ना?
1: हाँ।
0: ये है पेड़। पेड़ है ना?
1: मौसी ने बता दिया ना।
0: और क्या, तुम्हारी मौसी भी तुम्हारी तरह समझदार है ना?
1: मौसी आप सच बताइए, आपको कैसे पता चला?
0: पता कैसे चला? बे सच बताओ, पहले तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी, मुझे लगा शायद मैं तुम्हारी पहेली का जवाब नहीं दे पाऊंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर बाद में सोचा, पेड़ का तना एक पैर हुआ जिस पर वो खड़ा रहता है ना?
3: बिल्कुल ठीक।
0: फिर उसकी डालियां उसके ढेरों हाथ हो गए, ठीक?
3: ठीक।
0: और चिड़िया पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है, ठीक है ना?
1: पेड़ फूलों को लगाकर हमारी दुनिया सुंदर भी करता है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
1: जब पेड़ सांस लेता है उससे ऑक्सीजन निकलती है, और पेड़ हवा भी जलाता है, और उससे हम जिंदा रहते हैं। पेड़ों से ही हमें फल फूल मिलते हैं,
4: और पेड़ों से ही हमें लकड़ियाँ मिलती है और दवाइयाँ मिलती है।
1: पेड़ों से ही खूब दवाइयाँ बनाते हैं,
2: पेड़ों से हरियाली होती है।
0: वेरी गुड।
3: पेड़ों से ही तो बादल की दोस्ती होती है।
0: हाँ देखो, एक पहेली से हमारा ज्ञान कितना बढ़ गया ना? है ना, हमने कितनी सारी चीजें सीख ली छोटी सी पहेली के अंदर।
4: बहुत अच्छी पहेली बनाई बच्चों।
0: और देखो ना, सूरज के प्रकाश में पत्तियां खाना बनाती हैं, तब पेड़ ढेर सारी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हमें जीने के लिए क्या चाहिए?
4: ऑक्सीजन।
0: इस तरह पेड़ क्या करते हैं? हमारी मदद करते हैं। देखा, तुम्हारी मौसी को भी कितना कुछ पता है, मानते हो ना?
1: मौसी आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो।
0: ओह थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए, थैंक यू सो मच।
4: जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हो वहाँ पर रेगिस्तान नहीं बन पाता।
0: हाँ भाई, ये भी पता है तुम्हारी मौसी को। अब तुम्हारी मौसी हूँ तो इतनी बुद्धू तो नहीं होंगी ना मैं? हाँ, इसीलिए तो कहते हैं खूब पेड़ लगाओ ताकि खूब हरियाली हो।
1: मैंने तो अपने घर में बहुत पौधे लगाए हैं।
0: बहुत अच्छी बात
4: है। मेरे घर पे तुलसी और मनी प्लांट है।
0: वेरी गुड। तो मुझे ठीक से समझ में आ गई पहेली, मैं बताती हूँ, गलत बोलूँ तो मुझे बता देना। पैर तना और डालियाँ हाथ, पेड़ खड़ा रहता दिन रात, सांस ये लेता, दुनिया जीती। इस पर चिड़ियों का घर साथ। धूप में खाना पेड़ बनाता। हरा रंग है इसको खास। बादल से है इसकी दोस्ती।

0: चिड़िया का गीत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। और अब प्रस्तुत है आज का अंतिम कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है
1: आओ तुक मिलाएं। आशा है कार्यक्रम आपको बहुत मजेदार लगेगा, क्योंकि इसके द्वारा हम खेल खेल में सीखेंगे तुक मिलाना।
2: तुम्हें तुक मिलाना आता है? क्यों ना दीदी के साथ सीखें तुक मिलाना।
3: हाँ तो बच्चों, हो जाए तुक मिलाने का खेल।
4: हाँ जी।
3: सब तैयार?
4: हाँ जी।
3: तो कहाँ से शुरू करें? हाँ तो ऐसा करेंगे, हम एक दूसरे की बात की तुक मिलाकर वाक्य बनाएंगे, ठीक है?
4: हाँ जी।
5: पर करेंगे कैसे?
3: हाँ हाँ बताती हूँ। देखो, जैसे मैंने कहा बड़ा सा आलू और इसकी तुक बनाई मैंने देखा भालू, ठीक है?
4: ठीक है।
3: तो बड़ा सा आलू
4: मैंने देखा भालू।
3: शाबाश। अब दूसरा बनाते हैं। मेरे पास रोटी, बनाओ मेरे पास रोटी, सोचो मेरे पास रोटी, बनाओ
5: रोटी छोटी।
3: शाबाश। वाह गुड़िया, तुमने तो बहुत अच्छा बनाया। अब आगे कौन जोड़ेगा? मेरे पास रोटी, रोटी छोटी छोटी,
5: रोटी मोटी मोटी।
3: वाह शाबाश शाबाश। मेरे पास रोटी, रोटी छोटी छोटी, रोटी मोटी मोटी। ताली बजाओ सब बच्चे इसी बात पर।
5: गाय ने खा ली रोटी।
3: शाबाश। मेरे पास रोटी, रोटी छोटी छोटी, रोटी मोटी मोटी, गाय ने खा ली रोटी। आगे, अब आगे कौन बनाएगा?
5: मैं बनाऊं?
3: हाँ हाँ बिल्कुल बनाओ।
5: लड़की रोने लग गई।
3: लड़की रोने लग गई। अच्छा है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, लड़की रह गई रोती। ये ठीक है?
4: हाँ जी।
6: हाँ जी।
7: गाय हो गई मोटी।
3: ये अच्छा है। गाय रोटी खाकर मोटी हो गई है ना?
5: गाय का पेट भर गया।
8: गाय अब लेट गई।
3: हाँ हाँ भाई, मोटी रोटी खाकर गाय भी मोटी हो गई, उसका पेट भी भर गया तो वो लेट गई। कहाँ लेट गई?
5: मिट्टी में। पलंग पर।
3: अच्छा पलंग पर,
5: घास पर।
3: हाँ ये ठीक है, घास पर वो लेट गई। तो हमारी तुक जरा बिगड़ गई, उसे हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है?
4: हाँ जी।
3: ठीक है तो फिर से शुरू करते हैं। मेरे पास रोटी,
4: मेरे पास रोटी,
3: रोटी छोटी छोटी,
4: रोटी छोटी छोटी,
3: रोटी मोटी मोटी,
4: रोटी मोटी मोटी,
3: गाय ने खा ली रोटी,
4: गाय ने खा ली रोटी,
3: लड़की रह गई रोती,
4: लड़की रह गई रोती,
3: गाय हो गई मोटी,
4: गाय हो गई मोटी,
3: घास पर वो लोटी,
4: घास पर वो लोटी,
3: घास पर वो लोटी,
4: घास पर वो लोटी, घास पर वो लोटी।
0: तो श्रोताओ, आशा है कि आपने तुक मिलाया और आपको बहुत मजा आया, है ना? तो अब इस कार्यक्रम के साथ हमारा उमंग प्रसारण यहीं समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
9: उमंग उमंग उमंग उमंग।
10: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है, तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की, पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की, दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की, किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की, फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेन के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-1166-66 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की बड़ी बूंद से भिंडी तक। तो आइए सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती कड़ी बूंद से।

0: मोना तू ठहर, तू ठहर
1: मुझे खाना नहीं।
0: अभी विवेक और तेरे पापा आ रहे हैं ना, वही ठीक करेंगे तुझे।
1: ओ मम्मी क्या कर रही आप,
0: इधर
1: क्या है?
2: रुको भाई, ये क्या हो रहा है? अरे विवेक, आज तो हमारे घर में ही सब पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, क्या हो रहा है?
3: तो समझ नहीं आ रहा कि मम्मी ये खाने की प्लेट लेकर की दौड़ लगा रही है।
2: वसुधा क्या हुआ तुमको?
0: हाँ, आप दोनों को हंसी आ रही है। हाँ, सब लोग इस मानव ने ना सुबह से मेरे नाक में दम कर रखा।
2: अरे वसुधा, मानव का तो काम ही है कि इस वसुधा यानी धरती को तंग करना। धरती बेचारी उपकार करे और ये उसे परेशान। तो भाई मानव, बात क्या है? रुक रुक रुक, खड़ा यहाँ पे।
4: अरे पापा, जब से आप और विवेक भैया सोसाइटी की मीटिंग में गए हैं, तब से मम्मी और मानव जुटे पड़े हैं।
2: अच्छा,
4: मम्मी बेचारी इसके पीछे पीछे भाग रही है और ये कभी सोफे पर तो कभी बिस्तर पर। मैं तो अभी अभी मदद करने पहुंची कि आप आ गए।
2: अब मानव,
3: मम्मी ऐसी क्या बात हो गई कि आपको पीटी ऊषा बनना पड़ा?
0: बंद करो ये। हंसी की बात नहीं है ये। ये मानव तो रोज जिद्दी का जिद्दी होता जा रहा है। कभी ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना। अब इससे पूछ कर भिंडी और पराठे बनाए मैंने। अब इन लाट साहब को भिंडी नहीं खानी, पराठे नहीं खाने।
2: ओ, तो मानव जी के खाने पर नखरे शुरू हो गए हैं।
1: पर पापा, मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है।
4: अरे भिंडी क्या, इस मानव को तो लौकी, टिंडे, तोरी, काशी फल कुछ भी पसंद नहीं है। हाँ, बाजार का अटरम शटरम जरूर पसंद है।
1: नहीं।
3: पर मानव, ये हरी सब्जियाँ, फल आदि तो सेहत के लिए बड़ी फायदेमंद होती है।
1: ओहो भैया, मैडम भी यही कहती है। पर स्वाद कहाँ से लाओ?
0: स्वाद तो एक थप्पड़ में आ जाएगा मानव।
2: वसुधा, प्लीज, क्या कर रही हो? अच्छा, तो मैं जो कुछ समझ पा रहा हूँ वो ये है कि हमारे मानव जी अब चटोरे हो गए हैं और अच्छी सेहत और स्वास्थ्य के बजाय उनके लिए स्वाद ज्यादा मायने रखता है। पर बेटा मानव, स्वाद तो भिंडी में भी है और साथ में पराठे हो तो भाई अब
4: मजा।
2: हमारे लिए भिंडी पराठे लगा दो ना भाई।
0: वो तो मैं लगा ही रही हूँ, पर इस मानव का कुछ तो करो ना, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अब नहीं कहेंगे आप जैसा पिता वैसा पुत्र, कहिए ना।
2: नहीं नहीं नहीं,
0: कहाँ से ये सब सीखता है ये लड़का। मानव, कभी देखा है अपने विवेक भैया को? कभी देखा है अपनी सृष्टि दीदी को ऐसे जिद करते हुए? रोज नए शौक, रोज नए शौक।
2: और कभी पापा को देखा है जिद करते हुए?
3: पापा, अगर मानव हमारे साथ इस्लाम अंकल का लेक्चर सुन लेता तो शायद खाने की क्या किसी भी बात पर जिद नहीं करता।
4: अच्छा, ऐसा क्या बताया था इस्लाम अंकल ने?
2: ऐसी बात। अरे बेटा, अभी आने ही वाले हैं वो हमारे यहाँ, उन्हीं से पूछ लेना।
4: हाँ हाँ।
1: पर पापा, इस्लाम अंकल तो समुद्र, वायुमंडल वगैरह की बातें करते हैं, इसका भिंडी से क्या संबंध?
3: अरे मानव, इस भिंडी का क्या तुझसे क्या मुझसे सबसे संबंध है?
1: पर वो कैसे भैया?
3: मानव, वो तो तुझे इस्लाम अंकल ही समझा पाएंगे।
0: हाँ, और उनकी डांटे तो तुझे अच्छी तरह याद भी रहती है। आने दे उन्हें, सारी करतूतें बताऊंगी तेरी।
4: लगता है इस्लाम अंकल आ गए।
5: क्या हाल है बेटा सृष्टि?
4: नमस्ते अंकल।
5: नमस्ते भाई साहब।
4: नमस्ते भाई साहब।
5: भाई साहब, ये मेरे मित्र डॉक्टर राजीव।
6: नमस्ते भाई साहब।
2: नमस्ते।
6: नमस्ते भाभी जी।
4: नमस्ते भाई साहब।
5: ये कृषि वैज्ञानिक हैं और आजकल बदलती जलवायु का विभिन्न पौधों और मिट्टी पर प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं।
4: आइए भाई साहब, आइए। मैंने बस खाना अभी लगाया ही है। आइए डॉक्टर राजीव, आप भी आइए। आइए ना,
5: आइए सर। और डॉक्टर राजीव, एक मिनट, ये विवेक, ये सृष्टि और ये हमारा मानव।
4: नमस्ते।
6: नमस्ते। हेलो हेलो।
2: आ जाए, खाना खाते हैं।

0: खाना तो बहुत ही बढ़िया बना
1: और लीजिए ना,
0: मजा आ गया सच।
1: आप भी लीजिए भाई साहब।
0: बस भाई अपनी सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, पर आप ना थोड़ा इस मानव को समझाइए, घर का खाना तो जैसे इसे खाने को दौड़ता है।
0: मानव
2: जी,
0: ये सब क्या है?
2: वो अंकल, हमारे मानव को भिंडी नहीं पसंद।
3: कमाल है भाई, मुझे तो बहुत पसंद है।
4: अरे भाई, पसंद तो हम सबको है डॉक्टर राजीव, पर हमारे मानव को तो ये सब सब्जियां, दालें, सब फालतू ही लगती हैं।
5: अंकल, मैंने मानव से कहा है कि आप भिंडी की अहमियत अच्छी तरह से बता पाएंगे, तो उसे लगता है कि सागर, महासागर और वायुमंडल की बातें करने वाले वैज्ञानिक का भिंडी से क्या वास्ता।
0: अरे भाई मानव, इन महासागरों वायुमंडल का तो सभी से वास्ता है। अच्छा, मैंने कहा था कि मुझसे हर बार चार रोचक सवाल पूछना, कुछ सवाल सोचे?
2: वो सोच रहा हूँ अंकल, वो
3: चलो तुम सवाल सोचो, तब तक हम सारे महासागर और वायुमंडल का चक्कर भी बताते हैं, और हाँ, भिंडी का भी।
2: इस्लाम अंकल, मानव तो आपसे वैसे भी बहुत डरता है, मम्मी तो बस चाहती है कि आप उसे इन सब्जियों से प्यार करवा दे, बस उनकी सारी परेशानी खत्म। बिल्कुल भाई साहब।
0: अरे सृष्टि बेटी, भिंडी की अहमियत समझने के लिए पहले महासागरों, वायुमंडल, भूमि के आपसी संबंधों को तो समझे। हाँ तुम्हारा
2: जी,
0: पिछली बातें कुछ याद है तुम्हें?
2: हाँ थोड़ी थोड़ी याद है।
4: इस्लाम भाई, वो ब्रिजमोहन जी और अल्पना जी नहीं आए?
0: वो आज जरा कुछ अन्य काम में व्यस्त हैं, कल आएंगे।
4: अच्छा
3: अच्छा, मानव ये तो तुम शायद जानते ही हो कि सूरज ही हमारी सारी ऊर्जा का स्रोत है।
2: हाँ अंकल।
0: भाई राजी, ये सब तो पिछली बार इन्होंने जाना समझा था।
3: अच्छा
0: अच्छा, बच्चों ये बताओ, सूरज से हमारी दूरी कितनी है?
5: अंकल करीब 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक।
3: अरे वाह विवेक।
5: थैंक यू अंकल।
0: हाँ तो भाई, इतनी दूरी से सूरज की कुल ऊर्जा का कुछ अरबवा भाग ही हमारे इस शानदार ग्रह तक पहुंच पाता है।
2: अंकल, इतनी कम ऊर्जा?
3: हाँ सृष्टि बेटी, पर इतनी ऊर्जा भी इसके विभिन्न जीवन को गर्मी और रोशनी देने के लिए पर्याप्त है।
2: अच्छा।
3: और इसके साथ साथ ये ऊर्जा वायुमंडलीय और महासागरीय गतिविधियों को भी निर्धारित करने में भूमिका निभाती है।
0: यानी हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा द्वारा चालित दो मुख्य प्रणालियां इस धरती पर है, पहली जीवन प्रणाली और दूसरी महासागर वायुमंडलीय प्रणाली, समझे?
3: देखो बेटा, इन दोनों प्रणालियों में जहाँ ऊर्जा का तो बाहरी अंतरिक्ष से आदान प्रदान होता है, परंतु किसी तरह का द्रव्यमान बाहरी अंतरिक्ष से नहीं आता जाता।
0: अच्छा।
3: यानी दोनों ही प्रणालियाँ ऊर्जा को छोड़कर सभी कुछ इस धरती से पाती हैं।
5: अच्छा, पर अंकल सौर ऊर्जा और महासागर वायुमंडलीय प्रणाली के कारण ही पानी वायुमंडल से महाद्वीपों की यात्रा तय करता है ना?
0: अरे वाह, शाबाश विवेक। और महासागर वायुमंडलीय प्रणाली एवं ठोस भूमि के बीच आपसी रिश्तों के चलते ही चट्टानें टूटती हैं और मिट्टी के लिए सामग्री बनती जाती है।
3: देखो बच्चों, पृथ्वी के लगभग हर हिस्से में जीवन ने अपनी पहुंच बनाई है, जो वायुमंडलीय गतिविधियों द्वारा, जल संचरण और ऊष्मा के वितरण द्वारा ही संभव हुआ है।
0: समझे कि नहीं आप लोग?
2: जी जी अंकल।
0: अच्छा ये बताओ कि ऊर्जा क्या होती है?
2: ऊर्जा यानी हमारे कार्य करने की क्षमता।
3: बिल्कुल ठीक सृष्टि, ऊर्जा अपने रूप बदलती है, और ऊर्जा अगर एक से दूसरे में ना बदले तो कोई भी गतिविधि ना हो।
2: लेकिन अंकल, ये ऊर्जा के रूप कुछ समझ में नहीं आए।
3: अब देखो मानव, यहाँ एक बिजली से जलने वाला बल्ब है
2: जी।
3: इसमें बिजली यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रकाश और ऊष्मा में बदल जाती है। हालांकि इस प्रक्रिया में बनी ऊष्मा अनावश्यक है, पर लगभग ऊर्जा

0: और इंफ्रारेड तरंगे भी पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा सोख ली जाती हैं, पर फिर भी प्रकाश तरंगे धरती की सतह तक पहुंचती हैं।
1: बेटा, इसके परिणाम स्वरूप दो मुख्य प्रभाव देखने में आते हैं। पहला, वायुमंडल दो मुख्य जोनों में गर्म होता है। उत्तरी वायुमंडल, जिसमें ओजोन परत होती है, वो ज्यादा ऊर्जा वाली तरंगे सोख कर गर्म हो जाता है, जबकि निचली परत धरती की सतह से टकराकर वापस लौट रही तरंगों को अवशोषित करने के कारण गर्म होता है।
2: अच्छा,
3: समझ गए ना सृष्टि?
2: हाँ, जी पापा।
0: देखो बच्चों, धरती की सतह से वापस लौटी तरंगों से दोबारा गर्म होने वाली वायुमंडल की निचली परत में अत्यधिक संचरण होता है, जिस कारण वायुमंडल के 10 से 18 किलोमीटर निचली परत में काफी बदलाव होते हैं, जिससे धरती में मौसमी परिवर्तन होते हैं और वायुमंडल एवं सतही चट्टानों में परस्पर गतिविधियां होती हैं, जैसे चट्टाने टूटकर मिट्टी के कणों में बदलती हैं और फिर इन्हें हवा, पानी और बर्फ अलग अलग स्थानों पर ले जाती है।
4: अच्छा। पर अंकल, इन तरंगों का धरती पर दूसरा प्रभाव क्या देखने में आता है?
1: देखो बेटा, दूसरा प्रभाव दिखता है धरती पर मौजूद वनस्पतियों पर, जो इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं।
4: अच्छा।
1: और फिर इन पौधों के द्वारा ये ऊर्जा अलग अलग जीवों में पहुंचती है,
2: खाद्य श्रृंखला के द्वारा, है ना अंकल?
0: शाबाश बेटी।
3: अब जैसा पिता वैसी पुत्री।
0: अच्छा, मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था कि कैसे ताप में भिन्नता घनत्व और दाब में भिन्नता पैदा करती है।
2: हाँ हाँ अंकल।
0: और घनत्व और दाब की भिन्नता के कारण ही हवा और महासागरों में हलचल प्रवाह गतिविधियां बनती हैं।
1: उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से ध्रुवीय क्षेत्रों तथा महासागरों का प्रवाह मौसम की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: हाँ राजीव अंकल, इस्लाम अंकल ने बताया तो था कि कैसे महासागरों की सतह पर बहने वाली हवा लहरें तो पैदा करती ही है, साथ साथ ये हवा पानी के तापमान के गुणों को भी अपने में समा लेती है।
0: वाह सृष्टि, तुम्हें तो बिल्कुल सब याद है।
3: उसको बहुत याद करवाता हूँ।
0: अब एक सवाल तुमसे पूछ लिया ना, तो बगले झांकते फिरोगे।
3: भाई इसीलिए तुमको लाए हैं यहाँ।
0: अच्छा चलो, बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये सारी प्रक्रियाएं महाद्वीपों के चारों तरफ और अंदर पानी की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और इन्हीं के द्वारा महाद्वीपों तक सारी सामग्री के संयुक्त प्रणाली के रूप में आती जाती है।
5: पर अंकल, सब कुछ आ गया और चला गया, पर भिंडी अभी तक नहीं आई।
0: आएगी मानव बेटे, भिंडी भी आएगी। हाँ, अभी तुम ये तो समझो कि इस पूरी महासागर और वायुमंडलीय व्यवस्था को चलाने के लिए इंजन का काम सूरज की धरती पर पहुंची ऊर्जा ही करती है।
1: देखो बच्चों, वायुमंडल और महासागरों में बहुत ही रोचक फर्क उनके ऊष्मा के हस्तांतरण को लेकर है।
2: अच्छा।
1: महासागरों में जहां सबसे ऊपरी सतह गर्म होती है और ये ताप नीचे की परतों की ओर जाता है, वहीं वायुमंडल में ताप धरती की ओर से लौटी ऊष्मा के कारण नीचे की परत से ऊपर की ओर जाता है।
0: पहले महासागर गर्मी सोखते हैं और उनमें ज्यादा गर्मी सोखने की क्षमता भी होती है। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, जीवाश्म ईंधन के जलाने के परिणाम स्वरूप पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड में से 30-50% तो महासागर ही सोख लेते हैं।
2: अच्छा।
4: तो ये महासागर कार्बन के बड़े भंडार होते हैं।
0: महासागरों वायुमंडल के आपसी ऊष्मा के लेन देन और गर्म से ठंडे इलाकों की ओर गतिविधियों के कारण ही मौसम बनते हैं। पोषक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। पता है, पूरे वायुमंडल में जितनी ऊष्मा है उतनी तो महासागरों के ऊपरी 10 फीट में ही समाई रहती है।
1: बेटा, महासागरों में विभिन्न जीवों के लिए इस धरती पर करीब 99% जगह उपलब्ध है, और 90% महासागर में रहने वाले जीव उन गहराइयों में रहते हैं जहां अभी मानव की पहुंच भी नहीं है।
5: पर अंकल, ये भिंडी कहां रह गई?
0: मानव लाखों करोड़ों वर्षों पहले इस खौलते उबलते ग्रह में पानी की एक बूंद बनी, और धीरे धीरे कई बूंदें जो इसी ग्रह में कई रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनी और फिर महासागर बने,
1: और इन्हीं बूंदों ने बरसकर ग्रहों को ठंडा किया, महासागरों

0: में जीवन पनपा।
1: करोड़ों वर्षों से पानी की मात्रा इस ग्रह पर लगभग एक जैसी बनी हुई है। ये पानी वायुमंडल की यात्रा करता हुआ फिर महासागरों पर बरसा और फिर वायुमंडल में वाष्पित हुआ, फिर कभी किसी महाद्वीप पर बरसा।
0: इन्हीं महासागर वायुमंडल की गतिविधियों के चलते मिट्टी बनी जिसमें कई रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही थीं। फिर कभी एक जटिल बीज बना जिसमें पनपने की ताकत थी
1: और फिर उस बीज पर इन सारी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनी एक पानी की बूंद गिरी जिसने उस सोए बीज को जगाया, वो फला फूला और पौधा बना। शायद तुम्हारी इस भिंडी का पहला पौधा। फिर कई बीज बने
2: और फिर
1: असंख्य भिंडियां।
0: और बेटा क्या पता जो भिंडी तुमने आज खाई उसमें वही करोड़ों वर्षों पहले बने पानी की वही पहली बूंद हो। उसमें तपती धरती के ठंडे होने में बिखरी और फैली वही ऊर्जा हो
1: और आज वही ऊर्जा तुम में होती हुई फिर आने वाली पीढ़ी के लिए शायद कोई नया रूप ले ले। समझे?
3: समझ गया अंकल। ऐसे ही हर चीज भी प्रकृति की करोड़ों वर्ष की मेहनत का नतीजा है।
4: हम इस मेहनत को बेस्वाद कहकर नकार नहीं सकते।
3: तो समझे महासागर वायुमंडल की प्रणाली का हमसे और भिंडी से रिश्ता। हाँ दीदी।
1: मानव
3: जी,
1: कल मैं तुम्हें महासागरों में बहती नदी के बारे में बताऊंगा।
3: सागर में नदी, वो कैसे अंकल?
1: अरे भाई वो तो कल बताऊंगा। हाँ, लेकिन आज तुमने फिर कोई सवाल नहीं पूछा।
3: अरे अंकल, आज तो भिंडी के सवाल में ही इतना उलझ गया था कि मैं क्या पूछता, लेकिन कल जरूर पूछूंगा।
1: चलो भाई आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें कल करेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
3: और मम्मी कल मैं स्कूल ना भिंडी लेके जाऊंगा।
5: कल सुबह मैं ताजी भिंडी बनाऊंगी अपने बेटे के लिए।
2: चलो भाई, मानव ने प्रकृति की मेहनत की कुछ तो इज्जत की। वसुधा, अब तुम्हारी कोई भी सब्जी बेकार नहीं जाएगी।
5: और इसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए इस्लाम भाई साहब का।
2: भाई
1: भाई, अगर देखिए अगर आपने इतना ही शुक्रिया करना है तो एक कप चाय पिला दीजिए और देखो गरम गरम पकौड़े भी।
5: अभी खाना खाया आप लोगों ने भाई साहब?

0: लोग जिस धरती पर रह रहे हैं उसका वातावरण जीने लायक बनाए रखने के लिए सबको मिलजुल कर नई तरह से सोचना होगा।
1: हाँ, ताकि लोग अपनी जिम्मेदारी और दुनिया भर में धरती की सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में ठीक से समझ सकें। इस सीरियल की परिकल्पना के बारे में विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर वीबी कांबले क्या कहते हैं सुनिए।
2: हम जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। सूक्ष्म जीव, वनस्पतियां व विभिन्न जीव जंतु यहां जीवन के विविध रूपों में समन्वय बनाए हुए हैं, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। जीवन का हर एक रूप या कहें कि जीवों की एक प्रजाति अपने अस्तित्व के लिए दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती है। पृथ्वी पर जीवन के विविध रूपों की जब हम बात करते हैं तो हम मानव प्रजाति की भी बात करते हैं। यदि हम अपने पर्यावरण को समझना और उसे सुरक्षित बनाए रखना चाहें तो हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के विभिन्न रूपों की परस्पर निर्भरता और जीवन के लिए हवा, पानी व मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना होगा। पृथ्वी पर जीवन लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पनपा है। जीवों की वे प्रजातियां पृथ्वी पर रही है जिन्होंने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। ऐसे परिवर्तन भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात और इसी प्रकार के अन्य प्राकृतिक कारणों से भी हुए होंगे। अक्सर ये परिवर्तन उन प्रजातियों द्वारा लाए गए थे जो विकास की सीढ़ी पर ऊंचे पायदान पर बैठी हैं। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं और विकास के लिए पर्यावरण पर नियंत्रण करने की कोशिश की और यही मानव प्रजाति ने अपने नाजुक संतुलन पर टीके पृथ्वी ग्रह पर भी किया। हमें विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति हम सदियों से परंपरागत स्वरूप से जलावन लकड़ी, कोयला व पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त करते आ रहे हैं। आज इस बात को सभी मानते हैं कि कोयले के दहन जैसी मानवीय गतिविधियों से ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड व दूसरी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी ग्रह का तापमान बढ़ने लगा है और पृथ्वी दिनों दिन गर्माती जा रही है। आज हमारे ग्रह पर कई खतरे मंडरा रहे हैं जो मुख्यतः बदलती जलवायु, बिगड़ता पर्यावरण, प्रजातियों का तेजी से सफाया होना, शुद्ध जल की घटती उपलब्धता, नदियों का समुद्र में पहुंचने से पहले ही सूख जाना, बंजर होती उपजाऊ जमीन, ऊर्जा स्रोतों की बिगड़ती हालत, बढ़ती बीमारियां, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उसका पेट भरना, ये सब समस्याएं हैं। इन सब की वजह से आज मानव का अस्तित्व ही खतरे में आ पड़ा है। आज हम चादर से अधिक पैर पसार रहे हैं। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों से अधिक की आवश्यकता है। मानवीय आवश्यकताओं की मांग पृथ्वी की क्षमता से परे है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक प्राकृतिक साधनों का दोहन कर रहे हैं और जिससे आज विकासशील देशों के अरबों लोग संकटों के साए में जी रहे हैं। इस दिशा में विश्व का ध्यान आकर्षित करने और यह बताने के लिए कि पर्यावरण वह है जहां हम रहते हैं और विकास को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने व समझने की कोशिश करने के लिए कि सभी के सहयोग से हम पृथ्वी ग्रह पर जीवन और जैव विविधता को बनाए रखेंगे, लोगों को चुनौतियों के साथ संभावित समाधानों के प्रति जागरूक करते हुए पृथ्वी ग्रह को संभावित विपदों से बचाना भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विज्ञान प्रसार 19 भारतीय भाषाओं में 52 कड़ियों वाला धारावाहिक धरती मेरी धरती विज्ञान प्रसार भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्था है जिसका उद्देश्य विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के साथ लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता का प्रसार करना है। इस धारावाहिक के माध्यम से पृथ्वी ग्रह के विभिन्न पहलुओं जैसे पृथ्वी के निर्माण, स्थलमंडल, महासागरों, वायुमंडल, जैवमंडल और जैव विविधता पर हम बात करेंगे। मैं यह आशा करता हूँ कि धरती मेरी धरती धारावाहिक नई पीढ़ी को पूरे ब्रह्मांड में जीवन को पनाह देने वाले इस पृथ्वी ग्रह को बनाए रखने की

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ, दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: बरसात के मौसम में छोटे बच्चों में दस्त की समस्या आम बात है,
1: जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो घबराएं नहीं, हर दस्त के बाद बच्चों को ORS का घोल देते रहें।
0: साथ ही साथ 14 दिन तक लगातार जिंक की गोली देनी है।
1: अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम है तो उसे आधी गोली माँ के दूध में घोल कर देनी है।
0: और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो पानी के साथ 1 गोली रोजाना देनी है।
1: ध्यान रहे, दस्त रुक जाने के बाद भी जिंक की गोली 14 दिन तक देनी ही है।
0: ORS और जिंक की गोली आपको आशा दीदी या फिर नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध है। और हाँ, ध्यान रहे, स्तनपान जारी रखना है और खाने के लिए सुपाच्य पदार्थ जैसे दलिया, खिचड़ी इत्यादि दे सकते हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों की सहायता लें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: चलो अब तुम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली, अब टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा, हो जा फुल्ली।

नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, किसे दिखाऊं, पता नहीं कितना पैसा खर्च हुई है।
1: अरे मैं तो कहूँ हूँ कि तुम इसे लेकर बाबा जी के पास जाओ, बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है, अरे नजर झड़वाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
2: अभी कहीं ले जाने में जाने की जरूरत नहीं है, जाके मेडिकल स्टोर से दवा ले लो या गांव के बंगाली डॉक्टर को दिखा लो, दोनों ही बहुत जानकार हैं। बड़े अस्पताल में बस बड़ा पैसा खर्च होता है और कुछ नहीं।
3: चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बच्चे को जिला में स्थित बीमार नवजात शिशुओं के लिए अलग से बने अस्पताल जिसको की SLCO बोलते हैं, वहाँ लेके चल सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर साहब और नर्स बहन जी बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल में विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। शहर के बड़े अस्पतालों जैसी सब मशीनें इस अस्पताल में हैं। अगर बच्चे की कोई जांच करानी हो तो अस्पताल द्वारा खुद ही करा ली जाती है। नवजात को लेकर इधर उधर भागना नहीं पड़ता है और इन जांचों और दवाइयों पर परिवार को कोई भी खर्च भी नहीं करना पड़ता। इसके साथ बीमार शिशुओं को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर वापस छोड़ने के लिए सरकार ने निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा दी हुई है। तो सोचिए कि सरकार ने अगर इतनी व्यवस्था की है तो हम क्यों अपने नन्हे मुन्ने की जान को जोखिम में डालें और क्यों फालतू पैसा खर्च करें।
0: मैंने सोच लिया है, अब अपने बच्चे को 102 एम्बुलेंस में ले जाकर SLCO में ही दिखाऊंगा।
3: तो आपको क्या समझ में आया, फर्क पड़ता है अगर आप अपने बीमार नन्हे मुन्ने को झाड़ फूंक, मेडिकल स्टोर, झोला छाप डॉक्टर या फिर महंगे प्राइवेट डॉक्टर की बजाय जिला अस्पताल में स्थित SLCO में दिखाते हैं, क्योंकि फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध

आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, विच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Nagada School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है, तो फिर कहीं देर ना हो जाए। कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
1: फॉलिकुलर चरण, इस चरण में गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फॉलिकल जिसमें अंडा रहता है और बड़ा हो जाता है। अंडे के छूटने से ठीक एक दिन पहले और अंडे के छूटने का दिन सबसे ज्यादा प्रजनन योग होते हैं। ये आमतौर पर माहवारी के 11वें से 14वें दिन के बीच में होता है, लेकिन ये बहुत अधिक इस बात पर भी निर्भर करता है कि महिला या लड़की का मासिक चक्र कितना लंबा है।
0: ओव्यूलेशन चरण, इस चरण में अंडा बाहर निकलता है। यदि महिला इस दिन या 3 दिन पहले यौन संबंध बनाती है तो गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फॉलिकल का फटना गर्भाशय की परत को और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
1: ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर माहवारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर माहवारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, स्तनों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है, जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
3: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ।
0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: mixing in the house.
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in। The world is here.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: अरे सुनीता, कैसी है मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी, बस ठीक है।
1: साफ सफाई का ध्यान रख रही हो?
2: जी दीदी, जैसा आपने बोला था, हर रविवार साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा देखते हैं, तुरंत साफ करते हैं। जैसे पानी का ड्रम, कूलर, फ्रिज की ट्रे, सबकी साफ सफाई करते हैं।
3: और आसपास कहीं भी टायर, नारियल, खाली बर्तन या किसी भी चीज में पानी जमा होने नहीं देते। दीदी
1: बहुत बढ़िया।

0: अब लो हर रविवार सफाई की जिम्मेदारी, मिलकर पड़ेंगे मच्छरों पर भारी।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-6666। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।